आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: ये शिव मंदिर है, कहते हैं वहां जाकर सच्चे दिल से जो भी मुराद मांगो वो पूरी हो जाती है। किसी दिन ले जाऊंगा वहां, भगवान से मांग लूंगा तुम्हें
1: सच।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: रोजी, ए रोजी, रोजी पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया?
1: क्या?
0: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
2: वो होने से क्या होता है?
0: जब मुझे हुआ था तो
1: तो
0: मुझे नींद नहीं आती थी,
2: मुझे भी नहीं आती,
0: मुझे भूख नहीं लगती थी,
2: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
0: दिल में दर्द होता था।
2: दर्द तो मुझे भी रहता है।
0: बस यानी कि तू गई काम से।
2: क्या?
0: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है, और इस रोग की बस एक ही दवा है,
2: वो क्या?
0: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
3: क्या हुआ योयो?
0: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
3: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
0: नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
3: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा। देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
1: बाय गॉड, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
3: तो
1: तो
3: ये यो तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल, तुझे कष्ट क्या है?
4: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है,
5: अच्छा,
4: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे,

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

0: जान, हमने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब अगर तुमने बेवफाई की।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
0: तो खुदा कसम, हम इन लहरों में डूब मरेंगे।

0: दो पड़ोसियों से, झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया।
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

0: का।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 2 PM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

0: गारे गारे
1: गारा पड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये आम को बटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर ये इन्ना आया है तो ये
2: कचतुर नार आम

0: चतुर नार
1: करके सिंगार
2: एक चतुर नार बड़ी होशियार
1: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
2: अपने ही जाल में फंसत जात
1: हम मरत

लौट आए

0: आजादी हो,
1: हो जाती है आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: मोना,
0: सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: बताइए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो,

0: देखो हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,

आप सुन रही हैं अंताक्षरी आरजे अमन के साथ सिर्फ रेडियो हॉटस्टार पर। आज के शो में होंगे दो मजेदार राउंड, राउंड वन सॉन्ग राउंड। आपको एक गाना दिया जाएगा, उस गाने के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला दूसरा गाना हमें भेजना होगा। राउंड टू मूवीज राउंड, आपको एक गाना दिया जाएगा, उस गाने की फिल्म के नाम की अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली दूसरी फिल्म का कोई एक गाना हमें भेजना होगा। ध्यान रहे, आपको सिर्फ गाना भेजना है, फिल्म का नाम नहीं। अपने सही जवाब हमें लिख भेजे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी, जो आप सुनना चाहते हैं वो भी भेजिए। तो तैयार हो जाइए गानों और फिल्मों की इस मजेदार खेल के लिए, अंताक्षरी आरजे अमन के साथ सिर्फ रेडियो हॉटस्टार पर। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार यानी रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से। आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं हॉटस्टार अंताक्षरी आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1989 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से, और सुनती रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बचाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज बहुत ही प्यारा शो जिसका नाम है अंताक्षरी। यस, ये हर यानी पांचवें रविवार को होता है। अगर यानी किसी महीने में यानी चार ही रविवार हुए तो नहीं होता है। जिस दिन पांचवा रविवार होता है ये प्रोग्राम आ जाता है। मतलब समझ लीजिए कि यानी हर ये मतलब फिक्स है ना, यानी कि फर्स्ट रविवार को क्या होता है, सेकंड रविवार को क्या होता है, थर्ड रविवार को क्या होता है, एंड यानी फोर्थ को एंड फिफ्थ को। तो यानी फिफ्थ वाला जो रविवार है वो स्पेशल होता है, क्योंकि ये ऐसा कोई कोई ही महीना होता है जिसमें पाँच रविवार होते हैं। और ये अगस्त का जो मतलब महीना है इसमें ये मौका मिल गया अंताक्षरी का। अंताक्षरी के आज बहुत ही खास एपिसोड होने वाले हैं, क्योंकि इसमें होंगे दो राउंड। यस, दो राउंड होंगे और हर राउंड भी कमाल का है। सबसे पहला जो राउंड है यानी पहला जो राउंड होगा, उस राउंड में जैसे कि आप यानी नॉर्मली अंताक्षरी खेलते आए हैं, गाने से गाने मतलब आप भेजते हैं ना, जैसे कि कोई गाना मतलब यानी प्ले हुआ ना, कजरी की धार ना मोतियों की हार ना कोई क्या सिंगार, तुम कितनी सुंदर हो, हाँ। अब अगला जो गाना भेजना होगा हाँ से भेजना होगा, ये तो सिलसिला चलता रहेगा। ये फर्स्ट राउंड का है। सेकंड राउंड का है मूवीज राउंड। मूवीज राउंड में क्या होगा कि आपको फिल्मों के नाम दिए जाएंगे, जैसे कि यानी कुछ कुछ होता है। अब कुछ कुछ होता है कि हाँ मतलब यानी कि उसमें से कोई भी गाना भेज सकते हैं। उसके बाद से अब इसका जो अंतिम अक्षर आ रहा है यानी कुछ कुछ होता है हाँ यानी एच आ रहा है, तो अब एच से अगला कोई भी जैसे हम आपके है कौन का कोई भी गाना भेज सकते हैं। मतलब दो राउंड बहुत मजेदार होने वाले हैं। तो फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए और आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

और एक खास बात और, जिस दोस्त को गाना गाना है, गुनगुनाना है, वो मेरे जो नंबर है 9135841232 उस पर डायरेक्टली मुझसे वो कॉल कर सकते हैं, गाने गुनगुना सकते हैं और गाना सुन भी सकते हैं।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। सबसे पहले आज जुड़ने वाले हमारे अशोक देशमुख जी हैं, बहुत वेलकम करते हैं। और रॉय पर्वत जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। बाबूलाल अंजाना जी भी हैं, आपका भी वेलकम है। और सर्वेश भगत जी भी हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। दिगंबर सिंह जी भी हैं, और सॉरी ये देवेंद्र सिंह जी हैं, बहुत वेलकम है देवेंद्र सिंह जी। लेकिन मैं सभी से कहूँगा कि आज भी आपको व्हाट्सअप नहीं कर मतलब आज भी आपको इन व्हाट्सअप ही करना है, क्योंकि एप्लीकेशन से आज मैसेज नहीं भेजना है, आज आपको व्हाट्सअप ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको कॉल करना है तो नंबर है 9135841232। इस पर व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, ना भूल कर भी व्हाट्सअप कॉल नहीं करना है, आपको नॉर्मल कॉल करनी पड़ेगी। हाँ, अगर गाना गुनगुनाने का शौक रखते हैं तो बिल्कुल कॉल कीजिएगा, हम आपके गाने को सुनेंगे भी और गाना प्ले भी करेंगे आपके लिए, टेंशन नहीं लीजिएगा फिलहाल। और बता दूं कि ज्योति खड़बड़ी जी जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप से, और अरुण मंडल जी, मिसाल अंगा जी, जाकिर खान जी, दीपक कुमार गायकवाड़ जी, निशांत राय बोले जी, सर्वेश भगत जी, मतलब सभी का भी यहाँ भी वेलकम करते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करने से पहले सुनवाते हैं आपको आज का ये नियम।
1: आप सुन रही हैं अंताक्षरी आरजे अमन के साथ, सिर्फ रेडियो हॉटस्टार पर। आज के शो में होंगे दो मजेदार राउंड, राउंड वन सॉन्ग राउंड। आपको एक गाना दिया जाएगा, उस गाने के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला दूसरा गाना हमें भेजना होगा। राउंड टू मूवीज राउंड, आपको एक गाना दिया जाएगा, उस गाने की फिल्म के नाम की अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली दूसरी फिल्म का कोई एक गाना हमें भेजना होगा। ध्यान रहे, आपको सिर्फ गाना भेजना है, फिल्म का नाम नहीं। अपने सही जवाब हमें लिख भेजे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पे, और अपने जवाब के साथ साथ गाने की रिक्वेस्ट भी, जो आप सुनना चाहते हैं वो भी भेजिए। तो तैयार हो जाइए गानों और फिल्मों की इस मजेदार खेल के लिए, अंताक्षरी आरजे अमन के साथ, सिर्फ रेडियो हॉटस्टार पर। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार, यानी रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अंताक्षरी का राउंड नंबर वन यानी सॉन्ग राउंड। इस राउंड में आपको एक गाना सुनाया जाएगा, आपको उस गाने के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला दूसरा गाना पहचानना है और उसी अक्षर से शुरू होने वाला अपना गाना हमें भेजना है। तो ध्यान से गाना सुनिए, उसके अंतिम अक्षर को पहचानिए और उसी अक्षर से शुरू होने वाला अपना गाना हमें व्हाट्सएप पर भेजें, हमारे नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पर। और अगर आप कोई गाना गुनगुनाना चाहते हैं और अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इसी नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पर डायरेक्ट नॉर्मल कॉल कर सकते हैं और अपना गाना हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, ध्यान से सुनिए और शुरू कीजिए अपनी अंताक्षरी।

और जुड़ने वाले में नाम है नीतू शरण जी और ये मुक्तिनाथ जी और हमारे हरीश कुमार जी व आरजे वंशिका जी सभी का वेलकम करते हैं।

अंतिम अक्षर है ग, तो ग यानी जी से गाने लिख के भेजिए मुझे 9135841232 पे, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं नॉर्मल कॉल इसी नंबर पे 9135841232 पे गाने गुनगुनाने के लिए।

0: जी हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हेलो
1: हाँ
0: हेलो
1: हाँ मैं संतोष कुमार वर्मा बोल रहा हूँ। हेलो
0: जी
1: जी
0: जी संतोष कुमार वर्मा जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका अंताक्षरी में।
1: धन्यवाद। ये
0: ओके
1: गा से नाम है गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है।
0: हाँ, तो गा दीजिए, थोड़ा गुनगुना दीजिए।
1: अच्छा। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम
0: वाह,
1: है।
0: बहुत अच्छा गाया आपका, थैंक यू सो मच। फिलहाल
1: धन्यवाद
0: मेरे पास जो हाँ,
1: धन्यवाद।
0: ओके धन्यवाद। और ले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास सबसे पहले जो मैसेज पहुंचा हुआ है वो ज्योति खटवड़े जी का पहुंचा हुआ है, जाकिर खान जी का, और संगीता अम्बुलकर जी, और सैयद दोनों जी, और तैयब अंसारी जी जुड़ चुके हैं, दीपक जी हैं, अरुण मंडल जी हैं, एंड हमारे ये निक्की मुक्ति राम जी हैं, सुनीता गोप जी हैं, सर्वेश भगत जी हैं, हुकुम चंद जी हैं, हरीश कुमार जी हैं, निशांत राय बोले जी और एम ताहिर जी जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो दो गाने हैं, एक जिन्होंने मुझे कॉल किया उनका भी गाना मैं प्ले करूंगा, लेकिन पहला गाना मैं ये प्ले करूंगा जिन्होंने मैसेज किया सबसे पहले, और ये मैसेज किए हैं ज्योति खटवड़े जी, और इनके साथ साथ बहुत दोस्तों ने इस गाने की डिमांड किया है।

ओके तो सभी के डिमांड पे ये गाना गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा एंजॉय कीजिए। इसके बाद मैं प्ले करूंगा ये वाला गाना जैसे गंगा जमुना सरस्वती वाला, और लेकिन अगला जो डिमांड होगा इसी गाने के साथ होगा। या मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ।

इन चश्मा मा एम से, आप यानी कि मा से या एम से मुझे गाने लिख के भेज सकते हैं 9135841232 पे, या चाहे तो कॉल करके गाना गुनगुना भी सकते हैं। आपके भी गाने को जरूर प्ले करूंगा मैं।

वेलकम बैक। मेरे पास इस बार मैसेज तो बहुत सारे आए हुए हैं लेकिन कॉल किसी का नहीं आया। कोई बात नहीं है, आप चाहे तो कॉल कर भी सकते हैं। लेकिन मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है एम ताहिर जी का, ज्योति जी का, हरीश कुमार जी का, सैयद दोनों जी का, संगीता अम्बुलकर जी का, और ये मुक्तिनाथ जी का, और तैयब अंसारी जी का, जाकिर खान जी का, सुनीता गोप जी का, अमित तपड़े जी का, विभूति भूषण जी का, अब्दुल जब्बार जी का, नीतू शरण जी का, और प्रमोद कुमार यानी कि प्रमोद यानी कि तैयारी जी नाम है, और बाबूलाल अंजाना जी। तो फिर सीधे हम लगाते हैं इनका गाना एम ताहिर जी का, सुनवाते हैं। लेकिन हाँ, मैं भूल गया था गंगा जमुना सरस्वती का गाना प्ले करना, सॉरी।

0: अमित तपड़िया जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं अंताक्षरी में। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया सर, बढ़िया।
0: और चलिए, आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा। इसी बहाने से बातें भी हो जाएंगी मेरी। और कैसे हैं आप?
1: जी सर, बढ़िया सर, एकदम बढ़िया।
0: ओके, तो आज अंताक्षरी का एक नया मतलब अंदाज मैं लेकर आया हूँ आप सबके बीच। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगे।
1: जी सर, जी सर।
0: तो बताइए, आप क्या गाना चाहेंगे?
1: पे गाना है ना सर?
0: जी जी जी।
1: तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है।
0: बहुत अच्छा गया आपको, थैंक यू सो मच। सुनवाते हैं गाने को, एंजॉय कीजिए। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए हुए हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ। सबसे पहले यानी कि काजल झक्का जी का, और उनके बाद से हमारे ये रूपचंद जी का, और तैयब अंसारी जी का, संगीता अम्बुलकर जी का, हमारे गजानन जी का, अमित पड़े जी का भी आया हुआ है, और सर्वेश भगत जी, ज्योति जी है, एक सावर भी जुड़े हुए हैं, नाम तो मुझे नहीं पता है, और ये यानी कि दीपक जी हैं, अकुंता बिन जी हैं, सुनीता गोप जी, अब्दुल जब्बार जी हैं, जाकिर खान जी हैं, प्रमोद जी हैं, हरीश कुमार जी हैं, विभूति भूषण जी हैं, ताहिर जी हैं, और नीतू शरण जी हैं। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए, फिर आते हैं तो अगला गाना काजल झका जी का प्ले।

0: अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं एम ताहिर जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हो?
0: बहुत अच्छे हैं और आपकी दुआएं हैं।
1: सर बहुत आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मेरे को एहसास हो रहा है इस बात का।
0: आवाज क्लियर नहीं आ रही है यहाँ तो बिल्कुल। ओके
1: नहीं सर, मैं दोबारा रिट्राई करता हूँ।
0: अच्छा ठीक है, ओके दोबारा ट्राई करते हैं। मैं फिलहाल बता दूं कि मेरे पास है जी एम ताहिर जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आवाज आ रही है?
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है।
0: ओके धन्यवाद देते हैं आपका, आपने कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और बहुत
1: सर, इसके लिए मेरी जानिब से भी शुक्रिया।
0: बहुत बहुत मैं आपका वेलकम करता हूँ अंताक्षरी के इस प्रोग्राम में।
1: जी सर।
0: तो बताइए आज आप वो कौन सा गाना गुनगुनाना चाहते हैं?
1: गाना तो कोई तड़कता भड़कता ले लीजिए सर।
0: आप कुछ भी गुनगुना सकते हैं,
1: क्योंकि तड़कता भड़कता ना हो तो आपके शो में मजा ही कैसा आ जाएगा, क्योंकि आपकी पेशकश को चार चांद तो तड़कते भड़कते गीतों से लगता है, उस पर आपकी ये शायरी और आपका अंदाज ये काबिले तारीफ होता है ना।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।

0: अच्छा जी।
1: और आपकी तबीयत जो नासाज थी सर,
0: हाँ
1: अब कैसी है?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ आज, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल अच्छा हूँ।
1: ओके सर, ओके सर।
0: तो बताइए वो कौन सा आप सॉन्ग गुनगुनाना चाहते हैं?
1: आपकी आवाज सुनने के बाद तो सब कुछ भूल गया सर।
0: कोई बात नहीं,
1: नहीं गाना आप बता दिए थोड़ा सा।
0: अच्छा फिलहाल में एक मिनट, मैं फिलहाल अगला गाना प्ले करता हूँ, यानी कि काजल झक्का जी का, उसमें आप भी शामिल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तुझे

ये गाना खत्म हो रहा है मौ पे, तो मौ से आप मुझे गाने लिया तो लिख कर भेज सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं 9135841232 पे, नंबर पे कॉल करना है, व्हाट्सएप पे नहीं।

0: सर्वेश भगत जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका अंताक्षरी में।
1: जी थैंक यू सर, धन्यवाद।
0: और कैसे हैं आप?
1: ठीक है ठीक है।
0: तो आज आप भी गाना गाइएगा?
1: थोड़ा गा लेंगे, मैं तो हूँ पागल मुंडा, तू है मेरी सोनी कुड़ी।
0: हाँ तो ये गाना हो चुका है।
1: हो गया?
0: हाँ, और दूसरा गाना पड़ेगा, जो गाना हो जाएगा उसको नहीं गाना है।
1: हाँ ठीक है, दूसरा वाला भेजेंगे।
0: वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं, और सबसे पहला मैसेज पहुंचा है मेरे पास किन का है, ये सुनीता गोप जी का है। ओके सुनीता गोप जी, सबसे पहले इन्होंने भेजा हुआ है, और उनके बाद है हमारे अरुण मंडल जी हैं, गजानन सलोकार जी हैं, रुबीना नाथ जी हैं, मोहम्मद क्या नाम इनका, मोहम्मद शाकिर जी हैं, अच्छा मोहम्मद शाकिर जी हैं, जाकिर खान जी हैं, संगीता अम्बुलकर जी हैं, और सोनू गौतम जी हैं, और मुक्तिनाथ जी हैं, और इन विभूति भूषण जी हैं, काजल झक्का जी हैं, नीतू शरण जी हैं, रूपचंद जी हैं, कुंताविनी जी हैं, और एक साहब नाम तो मुझे नहीं पता है, ये संदीप सुतार जी, अच्छा ओके संदीप सुतार जी हैं, ओके जी, और ज्योति खटवड़े जी हैं, अमित चपड़े जी हैं, और एक साहब और भी नाम तो मुझे नहीं पता चल रहा है नाम क्या है। अंत में नंबर है 12075, तो प्लीज अपना नाम लिख दीजिए और निशान साहब बोले जी हैं। तो सीधे मैं पहला कॉल लगा, मतलब कॉल लगाने की बात कर रहा हूँ, आदत हो गई है ना, जो मेरे पास पहला मैसेज पहुंचा है सुनीता गोप जी का, इनका मैं गाना प्ले कर रहा हूँ, इंजॉय कीजिए, और मुझे कॉल भी कर सकते हैं अब इस गाने पर जो भी अंतिम अक्षर आएगा उसके लिए।

हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। यानी कि वहां हाँ से गाना लिख के भेज सकते हैं मुझे 9135841232 पे, या कॉल भी कर सकते हैं नॉर्मल कॉल।

0: जी हेलो, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका।
1: हेलो सर, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ।
0: जी जी, बहुत बहुत वेलकम है प्रकाश जी।
1: जी धन्यवाद।
0: और कैसे हैं भाई प्रकाश जी?
1: सर बढ़िया।
0: ओके जी, तो अंताक्षरी में पार्टिसिपेट किया, आपका बहुत बहुत वेलकम है और धन्यवाद भी देते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए।
1: धन्यवाद तो सर, मुझे भी मास्क दिया ना आपने।
0: अभी दिया है। हाँ
1: हाँ से
0: जी, हाँ से
1: सर, हाँ से तो वही है, उसमें हाजिर है मोहब्बत की सजा पानी को।
0: ओके जी, तो अब गुनगुनाना पड़ेगा ना।
1: उसमें हाजिर है मोहब्बत की सजा पानी को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवानी को।
0: ओके ठीक है, गाना सुनवाते हैं थोड़ा देर के बाद। ओके धन्यवाद।
1: ओके सर, थैंक यू, वेलकम।

0: जी अरुण मंडल जी, आपका भी वेलकम करते हैं। वैसे मैं अभी कॉल उठाने वाला नहीं था, लेकिन अब कॉल आ गया तो रिसीव करना पड़ा। कहिए, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर।
0: ओके जी, आप भी कोई गाना गुनगुनाना चाहते हैं?
1: हाँ जी सर,
0: बताइए, गुनगुनाइए।
1: हाँ से है ना?
0: हाँ हाँ हाँ से है।
1: हाल कैसा है जनाब का?
0: क्या बात है,
1: क्या ख्याल है आपका?
0: ओहो,
1: हम तो मचल गए। ओहो हो,
0: यूं ही
1: फिसल गए।
0: फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए। ओके, धन्यवाद।

0: और सर्वजीत जी ने ही कॉल किया है, इनसे बातें करते हैं। जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं सर्वजीत सेठी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मंसूर जी, आप कैसे हो?
0: मैं तो एकदम बहुत ही झक्कास बिंदास फर्स्ट क्लास मजे में चकाचक ग्रांति के साथ हूँ।
1: जी जी जी सर।
0: तो आप भी कुछ अभी गुनगुनाना चाहेंगे?
1: जी सर, मैं कब आएगा मेरे साथ से?
0: अभी तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी अक्षर दिया ही नहीं है।
1: ओहो,
0: अक्षर देने के बाद ही आप लोग कॉल करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना?
1: जी जी,
0: धन्यवाद।

0: एक बात मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज मेरे ध्यान से सुन लीजिए। अगर मैं एक यानी गाना में मतलब यानी कि कॉल पे प्ले कर रहा हूँ, एक गाना मैसेज पे प्ले कर रहा हूँ, तो जब तक मैं मैसेज वाला प्ले नहीं करता हूँ मैं अक्षर नहीं दूंगा। मैसेज वाला प्ले करने के बाद ही मैं अक्षर दूंगा, उसके बाद आप लोग गाना भेजेंगे। अगर पहले भेजेगा तो आपका पहले आया हुआ भी मैसेज नीचे से ऊपर चला जाएगा, उसमें मेरी गलती नहीं है। फिलहाल इनका कॉल उठाता हूँ भाई। तैयब जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तैयब जी कैसे हैं? हेलो, हाँ तैयब जी कैसे हैं? वालेकुम सलाम।
1: और अमन भाई कैसे हैं?
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं तैयब जी?
1: बस अल्हम्दुलिल्लाह सही है।
0: ओके जी,
1: आप नहीं कर पाते हैं।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिलहाल अंताक्षरी सुन रहे हैं ना?
1: हाँ हाँ सुन रहे हैं।
0: ओके, तो अभी तो मैंने अक्षर दिया नहीं है, कोई अक्षर देता हूँ तो कॉल कीजिएगा प्लीज, है ना?
1: ठीक ठीक।
0: ओके धन्यवाद।

बिल्कुल, और मेरे पास जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ था वो पहुंचा हुआ था हमारे सोनू गौतम जी का और सुनीता गोप जी का, प्रमोद जी का, ये यानी कि मुक्तिनाथ जी का, अमित तपय जी का, और क्या नाम है इनका, ब्रह्मजीत जी। अच्छा, ब्रह्मजीत जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं ब्रह्मजीत जी, और रूपचंद जी हैं, कुंता बेनी जी हैं, काजल झक्का जी हैं, और संदीप सुतार जी हैं, हरीश कुमार जी हैं, जाकिर खान जी हैं, विभूति भूषण जी हैं, ताहिर जी हैं, संगीता अम्बुलकर जी हैं, बाबूलाल अंजना जी हैं, निशांत राय बोले जी हैं, दीपक कुमार गायकवाड़ जी हैं, नीतू शरण जी हैं, और संतोष जी हैं, मोहम्मद क्या नाम है इनका, मोहम्मद शाकिर जी हैं, ज्योति खटवाड़े जी हैं और गजानंद जी हैं। तो सीधे मैं इनका गाना प्ले करता हूँ, सोनू गौतम जी का, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं।

यस हा हा आ रहा है, एच आ रहा है, इससे आप मुझे हा से गाने लिखकर भेज सकते हैं 9135841232 पे, या कॉल भी कर सकते हैं नॉर्मल कॉल इसी नंबर पे। तो दोनों हाथ में लड्डू है आपके, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे।

0: जी बहुत बहुत वेलकम है सर्वजीत सेठी जी, अब कहिए, अब सुना सकते हैं।
1: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने,
0: चाहे तू
1: माने
0: चाहे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं। फिलहाल एंजॉय कीजिए गाने को।
1: ओके।
0: दिल जी प्रकाश जी, आप भी गुनगुना लीजिए थोड़ा। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल जी। अमित तपड़े जी, आप भी वेलकम करते हैं। हेलो
2: हेलो।

0: जी प्रकाश जी, बहुत बहुत वेलकम है एक बार फिर से।
1: थैंक यू सर।
0: हाँ
1: अभी सर, अभी आपने हाँ सब दिया ना?
0: जी जी हाँ सब दिया था।
1: तो सर हाँ से मुझे सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग के बोल इस प्रकार हैं सर।
0: बता दीजिए।
1: ओके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान पिताया होगा।
0: क्या बात है।
1: ओके मजबूर
0: करिए। धन्यवाद। ओके।

0: एक और कॉल। जी जी बहुत बहुत वेलकम है अमित तपड़े जी, आप भी सुना दीजिए।
1: जी सर, हमको हमें
0: हाँ ओके ठीक है, गाना पड़ेगा यहाँ पे, फोन करने का मतलब है गुनगुनाना पड़ेगा।
1: ना ना सर, गुनगुना रहा था, आवाज में आपकी थोड़ी सी आवाज बराबर नहीं आ रही थी।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए।
1: हमको हमी से चुरा लो, जी में कहीं तुम छुपा लो,
0: कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, एंजॉय कीजिए।

0: एक और कॉल सुनवाते हैं। जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी ताहिर जी। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ ताहिर जी आपका भी वेलकम करते हैं, कहिए।
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, आप क्या सुनाएंगे?
1: हम हाँ से वही गाना सुनना चाहते हैं, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे।
0: हम तुम दोनों जब, तो गुनगुनाइए थोड़ा सा।
1: हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे,
0: एक नया
1: इतिहास बनाएंगे।
0: बहुत बढ़िया, चलिए एंजॉय कीजिए पहले इस गाने को। धन्यवाद।

0: बिल्कुल, हम तुमसे, हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। और वैसे मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। सबसे पहला जाकिर खान जी का मैसेज आया हुआ है, इनका तो गाना मैं प्ले करूंगा ही करूंगा। और उनके बाद है सुनीता गोप जी, ज्योति खड़बड़े जी, मुक्तिनाथ जी हैं, अमित तपड़े जी हैं, और यहाँ पे रूपचंद जी हैं, बाबूलाल जी हैं, और क्या नाम है ये निक्की विभूति भूषण जी हैं, और यहाँ पे संदीप सुतार जी। एक और कॉल आता है, उठा रहा हूँ जी। सतीश शर्मा जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी।
1: नमस्कार अमन सर।
0: नमस्कार,
1: बहुत अच्छा लगा सर आज का स्टाइल जो आपने कराई है।
0: हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच
1: सर। ऐसे इसमें कॉल भी लेते रहते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, मैं बीच बीच में आप लोग से बातें भी करता रहूंगा और आप सबके पसंद के गाने भी सुनाऊंगा। लेकिन एक शर्त है, जिनका सबसे पहला कॉल आएगा उनके गाने को सुनाऊंगा। हाँ? और जिनका सबसे पहला मैसेज आएगा मैं उनके मैसेज को भी सुना, मतलब उनके गाने को भी सुनाऊंगा।
1: नो प्रॉब्लम सर, जिसने क्योंकि गुनगुनाना है वो गुनगुना लेगा।
0: हाँ, जिनको गुनगुनाना है बिल्कुल आकर गुनगुना सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
1: हाँ जी सर, तो शब्द कौन सा? हा या ना?
0: हाँ हाँ हाँ,
1: हमको, सॉरी सर दूसरा गाना।
0: अच्छा कोई बात नहीं।
1: हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी ना सोचा कौन हो तुम, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये भी ना जाना कौन हो तुम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए, थैंक यू सो मच। सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। बाय।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और मेरे पास और सारे मैसेज हैं, हमारे संदीप सुतार जी का, कुंता बेनी जी का, काजल झा का जी का, प्रमोद कुमार जी का, गजानन जी का, नीतू शरण जी का, निशांत रायबोली जी का, बाबूलाल अंजना जी का, और विष्णु चंद्र जी का, संगीता मुलकर जी का, अरुण जी का, और आरजे वंशी का जी जुड़े हैं। वेलकम करते हैं। फिलहाल अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, हमारे जाकिर खान जी का जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ था उनका, उसके बाद से सरवजीत सेठी जी के गाने को, फिलहाल सरवजीत सेठी जी के गाने को प्ले करते हैं और उसके बाद से जाकिर जी का।

0: एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं सरोजी सेठी जी।
1: जी सर।
0: हाँ, आप क्या सुनाना पसंद करेंगे आप?
1: तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूँ।
0: क्या बात है
1: सर, ये भी सुना।
0: सुनवाएंगे बिल्कुल, पहले इस गाने को एंजॉय करते रहिए। ओके
1: ओके,
0: धन्यवाद।
2: मोहब्बत करने की जाना।
0: एक और कॉल जी। सर्वज जी, जी सर्वज भगत जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका।
3: जी थैंक यू सर।
0: अब बोलिए, आप कौन सा गाना सुनाएंगे आप?
3: तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई।
0: थोड़ा देर कर दिए, थोड़ा पहले कॉल लगाते तब जाके आपका नंबर आया था, क्योंकि सर्वजीत सेठी जी बाजी मार लिया एक बार फिर से।
3: ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं।

0: और यानी प्रियंका जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और हाँ प्रियंका जी, और कैसी हैं आप? अंताक्षरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बढ़िया।
0: हेलो जी। तो
1: हाँ बढ़िया है।
0: हाँ तो आप भी गुनगुनाएंगी कोई गाना? हाँ गुनगुनाइए, आज मौका है आपके पास। जितना गुनगुना आज आपके पास मौका है, जितना गुनगुनाना है गुनगुना सकती हैं।
1: पास
0: से आया
1: है ना। मुझे दूर जाना है। मुझे दूर जाना है, पल भर की जुदाई।

0: क्या बात है,
1: तो बांध के आया मेरे प्यार का सहरा,
0: क्या बात है।
1: सजदे में अब तेरे
0: ओहो
1: मुझे सर झुकाना
0: वाह
1: है,
0: वाह
1: सजदे
0: वाह,
1: में अब तेरे मुझे सर झुकाना है, पल भर की जुदाई तेरे लौट आना
0: वाह
1: है,
0: वाह वाह,
1: बाकिया संग रहेगा तेरा
0: वाह वाह वाह,
1: प्यार, साथिया रंग लाएगा इंतजार
0: बिल्कुल रंग
1: तुझे।
0: लाएगा। और गाना आपने बहुत अच्छा गुनगुनाया, दिल से गुनगुनाया, धन्यवाद। एंजॉय कीजिए गाने को।

और मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा है ज्योति खटवड़े जी का, सोनू गौतम जी का, रवि महड़े जी का, गजानंद सुलकार जी का, जाकिर खान जी का, मुक्तिनाथ जी का, संगीता मुलकर जी का, रूपचंद गोयल जी का, अशोक देशमुख जी का, कुंता बेनी जी का, संदीप सुतार जी का, निशांत रायबोली जी का, सुनीता गोप जी का, और तैयब अंसारी जी का, और विष्णु चंद्र जी का, और संजय सहनी जी का, हरीश कुमार जी का, और इनका क्या नाम है भाई, नाम होगा इनका, ये संतोष जी है, संतोष जी है, जितेंद्र जी है, और एक साहब और भी है, नाम इनका भी मुझे नहीं पता है, और अरुण मंडल जी है, और ओके फिलहाल अगला गाना सुनवाते हैं।

रॉ आर से मुझे गाने लिख के भेज दीजिए 9135841232 पे, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और जिनका सबसे पहला कॉल आएगा मैं उन्हीं के गाने को प्ले करूंगा, जिनका सबसे पहला मैसेज आएगा उन्हीं के मैसेज वाले गाने को भी मैं सुनवाऊंगा। फिलहाल एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: बहुत बहुत वेलकम है दीपक कुमार गायकवाड़ जी।
1: नमस्कार अमन कुमार जी।
0: नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं भाई
1: जी? सर ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। थोड़ा ट्राई कर रहा था, मैंने दूसरा नेटवर्क से ट्राई किया तो मेरा नंबर लग गया।
0: अच्छा
1: जी सर।
0: ओके, तो अभी यानी कि रात से कौन सा गाना सुनाएंगे आप?
1: राजा को रानी से प्यार हो गया।
0: क्या बात है।
1: पहली नजर

0: जी प्रियंका जी, आपका भी वेलकम एक बार फिर से।
1: हाँ।
0: और आप क्या सुनाना चाहेंगी?
1: रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए।
0: क्या बात है।
1: एक बना

0: तेरे लिए रब ने बनाया मुझे, तेरे लिए तेरे लिए।
1: बहुत अच्छा गाया आपने।
0: मुझे तो गानों, मुझे गानों का कोई इशू नहीं है कि गाना रेडियो पे बजे चाहे ना बजे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग लिसनर कुछ ऐसे हैं जो अपना गाना सुन भी लेते हैं, सुना भी देते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नंबर भी नहीं आ पाता है।
1: जी जी बिल्कुल सही।
0: तो हम तो यही सोचेंगे कि उनका नंबर आए और उनको पहले फर्स्ट, मतलब उनको पहले सुनाया जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हम लोग तो जनरली सुनते रहते हैं।
1: हाँ, जी, जी,
0: और मैं तो सुनने से ज्यादा खुद का गाना गाना ज्यादा पसंद है।
1: जी बिल्कुल।
0: आप सुनाइए सुनाइए मत सुनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता।
1: नहीं देखिए यहाँ पे ये ऐसा है कि जिनका सबसे पहला कॉल आएगा मैं उनके गाने को जरूर शामिल करूंगा, ऐसा है।
0: नहीं, हम इस चीज का कोई इशू नहीं है हमारे मन में, ऐसा नहीं है हमारे मन में, ऐसी कोई दौड़ नहीं है कि पहले मेरा आना चाहिए। नहीं, नथिंग,
1: कोई बात,
0: बस ये है कि हमारी आवाज सब तक पहुंचती है वही काफी है हमें तो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: बाकी जिनका नहीं आता है ना उनको सुनाइए आप।
1: ओके हिमेश रेशमिया की बहन जी, फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए। इसको
0: नहीं है हिमेश रेशमिया की बहन फैन।
1: ओह क्या हुआ। साथ है कितना प्यारा। मुझे जब तक कोई कॉल करेगा नहीं तब तक आवाज इसका ठीक होगा नहीं। मैं ही कॉल कर लूं क्या? मुझे अच्छा। ओह माय गॉड, आवाज इसका कम हो गया है। कोई मुझे कॉल कर दो यार। और फिलहाल मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं, मैं शामिल करता हूँ।

और हमारे ये यानी कि संतोष जी हैं और आरजे पंचिका जी हैं और नीलेश सूर्यकार जी हैं और निशांत रायबोले जी हैं और विष्णु चंद्र जी हैं और प्रियंका जी हैं।

0: और मेरे अक्षर देने के बाद ही आप लोग कॉल करें प्लीज। जी हमारे यानी प्रकाश जी अक्षर देने के बाद कॉल कीजिएगा प्लीज। ओके हेलो हेलो
1: हेलो
0: अक्षर देने के बाद कॉल कीजिएगा प्लीज।
1: अमन सर आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी।
0: मैं कह रहा हूँ कि अक्षर देने के बाद कॉल कीजिएगा प्लीज।
1: दोबारा कॉल करता हूँ।

ओके, तो अगला गाना जो हमारे सबसे पहले यानी सोनू गौतम जी ने भेजा था उसको प्ले करता हूँ फिर। और सत्येंद्र वीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं।

तो राह में उनसे मुलाकात हो गई। ई ई से गाने आप मुझे भेज सकते हैं 9135841232 पे, या कॉल करके गाना भी सुना सकते हैं। जिनका पहला कॉल आएगा उनके गाने प्ले होंगे, और जिनका पहला मैसेज आएगा उनके भी गाने प्ले होंगे।

0: और ये नीतू सर जी आप कहाँ गई? जी बहुत बहुत वेलकम है प्रियंका जी आपका, एक बार फिर से स्वागत है अंताक्षरी में।
1: हाँ ई से आया है ना?
0: हाँ हाँ ई से।

0: अच्छा
1: बाद में जाने क्या हुआ,
0: ओहो
1: हाय बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई, बस थैंक यू इतना ही आता है।
0: ओके धन्यवाद।

0: अकबर खान जी आपका भी वेलकम है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: और अंताक्षरी के प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: तो आप क्या गुनगुनाना चाहेंगे? ई से
1: इंतहा हो गई इंतजार की,
0: बिल्कुल
1: हाय ना कुछ खबर मेरे यार की, फिर वजह क्या हुई
0: ओहो
1: इंतजार की।
0: क्या बात है, एंजॉय कीजिए गाने को। फिलहाल धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: एक साहब और का कॉल आ रहा है जी। हेलो, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, संतोष वर्मा जी।
1: जी
0: है ना, आप ही है ना।
1: इश्क में, जी जी, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं,
0: ओहो
1: किस कदर चोट खाए हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, धन्यवाद, एंजॉय कीजिए गाने को।

0: कॉल कॉल भाई प्रकाश जी का बहुत बहुत वेलकम करते हैं एक बार फिर से। प्रकाश जी
1: जी धन्यवाद।
0: हाँ अब आप भी गुनगुना सकते हैं बिल्कुल। हाँ ई से
1: सर सॉन्ग ई से दिया ना।
0: हाँ ई से ई से
1: सर ई से सर मैं सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। इश्क हुआ कैसे हुआ।
0: बिल्कुल सही हुआ। और मैं आपको बता दूं यही गाना नहीं नहीं ये नहीं आया है हमारे पास। इलू इलू आया हुआ है पहले। फिलहाल सुनवाएंगे कोई बात नहीं।
1: ओके सर ओके।

तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। जो सबसे पहले मैसेज पहुंचा है इलू इलू दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, और सुनीता गोप जी हैं, और सोनू गौतम जी हैं, जाकिर खान जी हैं, और विभूति भूषण जी हैं, ज्योति जी हैं, जितेंद्र जी हैं, संजय साने जी हैं, अशोक देशमुख जी हैं, कुंता बेनी जी हैं, विष्णु चंद्र जी हैं, और निशांत रायबोले जी हैं, काजल झटका जी हैं। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए। इलू इलू क्या है? और एक और गाना होता है इतना।

झा, तो झा से आप मुझे गाने लिख के भेज सकते हैं 9135841232 पे, या गा भी सकते हैं कॉल करके इसी नंबर पे। नर्वल कॉल करना है, व्हाट्सएप नहीं।

मैं कोई कंफ्यूज नहीं करता हूँ, जो भी मैं लास्ट गाना प्ले करूँगा, चाहे वो यानी कॉलिंग पे हो चाहे मैसेज से हो, और लास्ट गाने से ही मैं सवाल करने वाला हूँ। फिलहाल इसका मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुँचा हुआ है आरजे सोनी जी का, बिल्कुल, और सोनी जी के बाद से आया हुआ है हमारे यानी के क्या नाम है इनका, मतलब यानी के सोनू गौतम जी, अब भरजू जी, और हमारे और हमारे ये निशांत राय बोले जी हैं, और बाकी दोस्तों का तो जवाब जो है वो सही नहीं है। फिलहाल मैं सीधा इनका गाना प्ले करता हूँ, आरजे सोनी जी का झुमका गिरा रे।

0: जी संतोष जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं एक बार फिर से
1: जी। एक गाना और है इसका, झूठ बोले कौआ का खेल।
0: तो अब तो देर कर दिए, देर कर दिए बहुत। हाँ, बहुत देर कर दिए जी।
1: ठीक है, धन्यवाद। कोई

0: फिर क्या हुआ?
1: गया फिर चमका गिरा दे हम दोनों के इस प्यार में।
2: जी दीपक कुमार गायकवाड़ जी, बहुत बहुत एक बार फिर से वेलकम है, कहिए।
3: जी सर, राह से बताना ना।
2: हाँ हाँ, राह से गाना है।
3: रात का समा झूमे चंद्रमा, मन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा।
2: अच्छा जी, ओके, फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद
3: धन्यवाद।

0: फिर क्या हुआ?
1: फिर झुमका गिरा दे, मैं क्या बोलूं बेकार में, झुमका गिरा दे बदली के।
2: फिलहाल ये गाना।

और मैं कोशिश करूंगा, यानी पहले जो लोग फोन करेंगे मैं उनके गाने को प्ले करने के लिए, और जो लोग मैसेज से मुझे भेजेंगे उनके गाने को मैं बाद में प्ले करूंगा, और मैसेज वाले गाने को ही मैं दूंगा अक्षर। ओके, ये क्लियर कर देता हूँ। और कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ, तो आप लोग मुझे याद दिला दिया कीजिए प्लीज।

ओके और अगला जो गाना है मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यानी कि सुनीता गोप जी ने भेजा है मैसेज, उसके बाद बिरजू जी और प्रमोद जी, राहुल जी है, आरजे वंशिका जी हैं, ज्योति खटवड़े जी हैं, एक साहब और हैं क्या नाम इनका, यानी सोमू जी हैं, गजानंद जी हैं, दीपक गायकवाड़ जी हैं, और विष्णु जी हैं, और कुंता बेनी जी हैं, संजय सहनी जी हैं, और सोनू जी भी हैं। फिलहाल तो यानी कि सुनीता गोप जी के गाने को इन्जॉय कीजिए।

रंग चुरा के ये निकॉल। इसके से आप मुझे गाने लिख के भेज सकते हैं 9135841232 पे, या कॉल भी कर सकते हैं। जो पहले कॉल लगाएगा सबसे पहला गाना उन्हीं का प्ले होगा।

0: जी हेलो
1: हेलो सर जी
0: जी जी जी नमस्कार
1: गुड इवनिंग
0: गुड इवनिंग
1: नमस्कार
0: और कैसे हैं आपका शुभ नाम
1: रूपचंद गोयल जिला बाड़मेर राजस्थान
0: अच्छा जी रूपचंद गोयल जी बहुत बहुत वेलकम है आपका बताइए कैसे हैं
1: सर अच्छे है ये प्रोग्राम सर इतना अच्छा लगा कि इसको हर संडे को कर दीजिए सर
0: नहीं सर ये हर यानी के पांचवें संडे को ही आता है
1: जी मेरी इच्छा है कि हर संडे को आए
0: हर संडे को पॉसिबल नहीं है सर जी
1: जी जी
0: ओके फिलहाल बताइए
1: गाना गुनगुना दूं कुछ बातें हो चुकी है कुछ बातें अभी है बाकी वो छार एक पड़ी है बरसाते अभी है बाकी
0: क्या बात है?
1: हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है मिलन अभी आधा अधूरा है
0: ओहो, क्या बात है सुनवाते हैं इस गाने को लेकिन फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए ओके धन्यवाद
1: जी थैंक यू

0: एक और कॉल आ रहा है जी, आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाई विष्णु जी।
1: हेलो
0: हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार विष्णु जी,
1: करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से।
0: तो गाना गुनगुनाइए ना भाई।
1: और गाना गुनगुनाना मुझे थोड़ा सा मिस्टेक होता है, इसलिए।
0: कोई बात नहीं, गुनगुना सकते हैं। देखिए, हंसना
1: करते
0: गाना और रोना सबको आता है।
1: इंडिया से
0: जी,
1: हाँ, करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। इतना ही बहुत।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिलहाल आपने गा दिया ना, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एंजॉय कीजिए गाने को।
1: ठीक।
0: और मैं यही कहूंगा कि रोना गाना और हंसना सबको आता है, यानी कोई अच्छा से रो लेता है, कोई अच्छा से गा लेता है, और कोई अच्छा से समझ रहे। एक और कॉल जी। प्रियंका जी, इससे पहले आपका कॉल आया था लेकिन आवाज मेरी नहीं जा रही थी आपको।
2: नहीं आ रही थी। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही दौड़ और होड़ का काम हो गया।
0: चलिए फिलहाल बताइए, आप भी गुनगुना दीजिए।
2: इतना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ।
0: अच्छा, मालूम हो गया।
2: जीते नहीं तो पर
0: ओहो,

बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं। सबसे पहला मैसेज इन कुंता बेनी जी का है और उनके पास यह नजरे अंसारी जी का, अच्छा नजीर अंसारी जी का, और इन सोनू गौतम जी का, अरुण मंडल जी का, ज्योति जी का, जागीर खान जी का, सुनीता गोप जी का, प्रमोद कुमार जी का, संगीता अम्बुलकर जी का, बर्जू जी का, और अर्धवंशिका जी का, दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, निशांत राय भोले जी का, और यानी कासिम जी का, और इन विष्णु चंद्र जी का, सोनू जी का, संजय सानी जी का, प्रियंका जी का, और सभी का।

0: जी हेलो, बहुत बहुत आपका वेलकम है। हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत वेलकम है अंजनी कुमार जी।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार,
0: और कैसे हैं?
1: और बनिया है आपका दिया दुआ है।
0: अच्छा जी, और
1: जी बोलिए। जानी दुश्मन का गाना सुना दीजिए।
0: पहले आप बताइए तो गाना कौन सा? गाना कौन सा?
1: तेरी हाथ में
0: नहीं ये इस अक्षर पे नहीं है आपको, यानी कि गाना अक्षर जो दिया गया है वो ल है, एल ल से गाना पड़ेगा। हाँ, गा सकते हैं ल से?
1: ठीक है सर, हम बता रहे हैं, बता रहे हैं। इस बार नेक्स्ट गाना जो सुनकर हम बता रहे हैं आपको, अंतराक्षी हो रहा है ना?
0: हाँ, अंतराक्षी हो रहा है।
1: ओके,
0: धन्यवाद।

0: हमारे यानी क्या नाम है, चंद्रभूषण सिंह जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। हेलो हेलो
1: सर
0: जी, बहुत बहुत वेलकम है चंद्रभूषण सिंह जी।
1: यस थैंक यू सर, मैं सुमन सिंह बोल रहा हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज से।
0: जी जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका जी। और बताइए कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? उधर का मौसम कैसा है?
0: बहुत ही बेहतरीन मौसम भी है और मैं भी बहुत अच्छा हूँ
1: जी सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार बात हुआ है मेरा।
0: जी जी जी जी, मुझे भी आप सबसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगता है। तो बताइए तो आज एल अक्षर से कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप?
1: लाल दुपट्टे वाली अपना नाम तो बता।
0: अच्छा,
1: ये वाला सर।
0: तो मतलब ये तो है वो लाल दुपट्टे वाली, यानी कि ओ से है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए मैं आपके लिए गाना प्ले कर दूंगा, आपने कॉल किया है तो, है कि नहीं?
1: जी सर बिल्कुल
0: बिल्कुल, ठीक है। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए, हम सुनवाते हैं आपके गाने को। और कौन जी? बहुत बहुत वेलकम एक बार फिर से आपका, प्रियंका जी।
2: एल से ला से ना?
0: हाँ हाँ ला से।

0: हाँ कब हुआ दोनों ने चाहा ये जब हुआ। मुझे क्या जाने कब तिमुर तलक ए जाने जाएगा ये सिलसिला। ये हमारी आवाज तो हमें ही आ रही है
1: कोई बात नहीं,
0: में डिस्टर्ब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या गा रहे हैं।
1: नो प्रॉब्लम, आप गाते रहिए, आपकी आवाज सिर्फ अच्छी जा रही है वहाँ पे, नो प्रॉब्लम, टेंशन मत लीजिए।

0: एक और कॉल हमारे अकबर खान जी का, बहुत बहुत वेलकम है अकबर खान जी एक बार फिर से। वालेकुम सलाम, और बताइए।
1: ल पे कहना है
0: जी, ल से
1: लाखों है यहाँ।

0: ओके जी, धन्यवाद, एंजॉय कीजिए।
1: धन्यवाद।
0: और फिलहाल मैं इस गाने को प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय कीजिए। और इसके बाद बताऊंगा कि यानी कि किनका मैसेज सबसे पहले मेरे पास आया हुआ है।

और मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंचे हैं। इस बार सबसे पहला मैसेज पहुंचा है मेरे पास संगीता अम्बुलकर जी का, ज्योति खटवड़ जी का, बरजू जी का एंड बाबूलाल अंजाना जी का और आरजे बंसिका जी का और आरजे सोनी जी भी है, ओ माय गॉड, निशांत राय बोले जी है और संजय सानी जी हैं और यहाँ पे हमारे गजानंद जी हैं, प्रमोद कुमार जी हैं, राहुल सुख जी हैं, दीपक कुमार जी हैं, अकुंता बिनी जी हैं, नजीर जी हैं और विशाल क्या नाम है इनका, यानी विष्णु चंद्र जी हैं और यानी अभिषेक जी हैं और भी बहुत से दोस्त हैं। फिलहाल तो ये मैं इनका गाना प्ले कर रहा हूँ, लाल दुपट्टा उड़ गया रे।

0: और अस्सलाम वालेकुम आमना खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है अंताक्षरी में।
1: वालेकुम सलाम। समझ तो कुछ नहीं आ रहा है, बस आप थोड़ा बता दीजिए
0: मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो अक्षर मैं दूंगा उन अक्षरों से गाना गाना है, लेकिन अब ये स्टार्ट होने वाला है सेकंड राउंड। तो इस यानी के सेकंड राउंड में आपको क्या करना है कि मैं फिल्मों के नाम बताऊंगा, उस फिल्मों में से आपका यानी कोई भी गाना जो उस फिल्म में आता हो, जैसे मतलब मैंने नाम रख दिया यानी कुछ कुछ होता है, अब कुछ कुछ होता है मैं कोई भी गाना मतलब उस फिल्म के कोई भी आप मुझे भेज सकती हैं या उस गाने के लिए फोन करके आप मुझे बता सकती हैं, तो मैं आपके गाने को मतलब यानी प्ले करूंगा, जो जिनका सबसे पहला कॉल आएगा या सबसे पहला मैसेज आएगा उनका। जी
1: अच्छा, तो मैं थोड़ी देर के बाद कॉल लगाऊंगा।
0: जी जी जी, थोड़ी देर में कॉल लगाइए।
1: ओके।

आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं हॉटस्टार अंताक्षरी आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1989 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनती रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बचाते रहो दिल से। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज की अंताक्षरी का राउंड नंबर 2 यानी मूवीज राउंड। इस राउंड में आपको एक गाना सुनाया जाएगा। आपको पहचानना होगा कि ये गाना किस फिल्म का है। अब उस फिल्म के नाम के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाली किसी दूसरी फिल्म का एक गाना आपको हमें भेजना होगा। ध्यान रहे, आपको फिल्म का नाम नहीं भेजना है, सिर्फ उस दूसरी फिल्म का गाना हमें भेजना है। तो ध्यान से गाना सुनिए, फिल्म के नाम के अंतिम अक्षर को पहचानिए और उस अक्षर से शुरू होने वाली किसी दूसरी फिल्म का एक गाना हमें व्हाट्सएप पर भेजें। हमारे नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पर। और अगर आप कोई गाना गुनगुनाना चाहते हैं और अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे इसी नंबर 9135841232 यानी 9135841232 पर डायरेक्ट नॉर्मल कॉल कर सकते हैं और अपना गाना हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, ध्यान से सुनिए और शुरू कीजिए मूवीज राउंड की अंताक्षरी।

0: जी, अब आपको फिल्म यानी विवाह का अंतिम अक्षर हो रहा है एच से मुझे गाने भेजना है या कॉल करना है, तो कॉल आ चुका है मेरे पास आमना जी का। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आमना जी। जी हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
1: जी मैं ठीक हूँ।
0: और सबसे पहला कॉल भी आ गया, मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, आपकी दुआएं हैं।
1: जी वो तो है जी, मैं बता दूं।
0: जी जी,
1: मूवी का नाम विवाह है।
0: हाँ हाँ।
1: और
0: इसका अंतिम आगे जो का अक्षर है यानी लेटर है,
1: हम दिल दे चुके सनम।
0: ओके, हम दिल दे चुके सनम का कोई भी गाना सुन सकते हैं, बताइए कौन सा गाना। गुनगुनाना पड़ेगा, थोड़ा
1: गुनगुनाना पड़ेगा,
0: मतलब थोड़ा सा गा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा।
1: जी ठीक
0: है। क्या बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी बिल्कुल, आपका गाना तो जरूर प्ले होगा, फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए। ओके, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: ओके।

0: मुझे हक।
1: एक और कॉल आया हुआ है जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, अंजनी कुमार जी।
2: जी सर नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार जी, बताइए।
2: हम तुम्हारे हैं सनम का गाना टाइटल सॉन्ग।
1: जी बिल्कुल, और इसी गाने का सबसे पहला मैसेज मेरे पास आया भी है, तो जरूर ये मैं प्ले करूंगा, लेकिन अगर अभी आंखों की गुस्ताखियां माफ करें, ये सुनिए। ओके धन्यवाद।
2: ठीक ठीक ठीक हो गए सर।

जी, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं। सबसे पहले आरजे सोनी जी का मैसेज आया हुआ था मेरे पास, उसके बाद अनिल कश्यप जी का, गोपाल परिदार जी का, संगीता अम्बुलकर जी का, कुंता बेनी जी का, रवि मोहरे जी का, बर्जू जी का, प्रमोद कुमार जी का, दीपक कुमार गायकवाड़ जी का, ज्योति खटवटे जी का, आवाज के मरकार जी रत्ना जी का, और इन विष्णु चंद्र जी का, सोनू जी का, विलास निकम सर जी का, आरती तिवारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी, और प्रियंका जी।

ओके, तो अभी इस गाने को सुनते हैं आरजे सोनी जी का, जिन्होंने सबसे पहले भेजा है। और ये फिल्म में हम तुम्हारे हैं सनम यानी माँ, एम आ रहा है अंत में, तो एम यानी माँ से स्टार्ट होने वाले फिल्मों में से किसी भी फिल्म का एक गाना जरूर लिख के भेजे, जिनका सबसे पहले आएगा मैं उनको मतलब यानी फोन भी करने वाला हूँ, सॉरी यानी कि अगर फोन आएगा तो उनसे पहले बातें करूंगा, उनका पहले पसंद गाना सुनाऊंगा, और जिनका पहला मैसेज आएगा उनका भी मैं गाना सुनवाने वाला हूँ।

0: जी बहुत बहुत वेलकम है आपका दीपक कुमार गायकवाड़ जी। नमस्कार, कैसे हैं?
1: नमस्कार सर
0: जी,
1: मेरा तीसरी बार कॉल लग गया
0: जी। अच्छी बात है,
1: लग गया मतलब। फिल्म का नाम है मन और मेरा मन।
0: अच्छा।
1: क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन।
0: ओके, फिलहाल इस गाने का एंजॉय।

0: जी आपका बहुत बहुत बहुत बहुत आपका वेलकम है राहुल जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, और कैसे हैं राहुल जी?
1: ठीक है जी।
0: ओके, तो अंताक्षरी में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं।
1: थैंक यू जी।
0: आज क्या सुनाना पसंद
1: हमसे जी? हमसे मोहब्बत, मोहब्बत है फिल्म।
0: ओके, गाना कौन सा सुनाएंगे उसका?
1: हमको हमी से चुरा लो।
0: थोड़ा गुनगुनाइए।
1: हमको हमी से चुरा लो।
0: अच्छा।
1: हम अकेले खो न जाए कहीं।
0: ओके, धन्यवाद। इंजॉय कीजिए पहले इस गाने को।

0: आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं इन प्रियंका जी।
1: मैंने प्यार क्या मूवी का सॉन्ग,
0: हाँ हाँ बताइए,
1: मेरे रंग में रंगने वाली, इस बार तो सर ये गाना सुनाई देना।
0: एक्चुअली आप देर हो गई हैं, तो पहले कॉल करती तो जरूर।
1: देर क्या, ये जब से तो हम लगाई रहे लगी नहीं रहे, तो बड़ा मुश्किल वाला काम हो गया, धक्का मुक्की वाला।
0: वो तो करना पड़ेगा ना,
1: ऐसे थोड़ी ना आता है सर, हम लोग तो जैसे लोग तो पीछे रह जाएंगे। हाथों हाथी कॉल लगाया है सर।
0: एक्चुअली या तो सबसे पहला हमको ये मैसेज कीजिए या सबसे पहला कॉल कीजिए, दोनों में से
1: कोई। सबसे पहले लगाया है लेकिन वहाँ तो बिजी चलता रहता है,
0: तो वो तो लोग का कॉल आते रहता, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए।
1: तो प्लीज आप ये गाना तो सुना दीजिए।
0: ओहो, तो फिलहाल
1: रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ही सुना देना।
0: अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा सा सुनाएंगे आपके लिए, नो प्रॉब्लम।
1: एक लाइन
0: एंजॉय कीजिए।

0: एक और कॉल आया हुआ है जी। बहुत बहुत वेलकम है सोहन लाल जी। हेलो हेलो, ओ माय गॉड, किसी किसी का कॉल, मतलब क्या ही बताएं। हम तुम्हारे सनम, फिर से कॉल आ रहा है इनका जी। जी सोहन लाल जी,
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत वेलकम है।
1: हेलो,
0: हाँ हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत वेलकम है सोहन लाल जी।
1: हाँ जी सर, कैसे हो सर?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: हाँ जी बस बढ़िया सर। और सर ठीक हो?
0: हाँ हाँ एकदम बहुत अच्छे
1: सर। सॉन्ग सॉन्ग सुनवा दो सर, सॉन्ग भेजा था मैंने।
0: अच्छा, वो कौन सा गाना है बताइए?
1: व्हाट्सएप पे था सर, मेरी जान तिरंगा है।
0: अरे भैया, वो यानी कि तिरंगा आज अभी इसमें नहीं आ रहा है, जो अभी एम वाले फिल्म से गाने भेजने थे, तो अभी बहुत सारे मेरे पास आ चुके हैं ऑलरेडी।
1: काफी दिन हो गए हैं, सॉन्ग ही नहीं सुन रहे हैं।
0: बहुत देर कर दिया आपने भेजने में। ओके
1: चलो सर, कोई भी सुना देना प्लीज।

और मैं बता दूं मेरे पास सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है ज्योति खटवड़े जी का, और आपकी मुराद पूरी हो गई, मतलब इन प्रियंका जी, क्योंकि उन्होंने इसी गाने को भेजा है। और आरजे सोनी जी भी हैं, और हमारे ये रूपचंद गोयल जी हैं, और यानी कि विष्णु चंद्र जी हैं, काजल झक्का जी हैं, और आरजे वंशिका जी हैं, रवि मोहड़े जी हैं, और संगीता अम्बुलकर जी हैं, कुंता बेनी जी हैं, और हमारे संदीप सुतार जी हैं, अनिल कश्यप जी हैं, बाबूलाल अंजाना जी हैं, विलास निकम सर जी हैं, दीपक जी लिखते हैं कि हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और निशांत राय बोले जी हैं, आवाज की मलकार जी रत्ना जी हैं, और ओके फिलहाल गाना सुनवाते हैं मेरे रंग में रंगने वाली। और मैंने प्यार किया अंत में है ए आ रहा है, तो अब ए नाम से जो भी फिल्में हैं उसको ढूंढिए और उसके किसी एक फिल्म का गाना लिख के भेजिए मुझे 9135841232 पे, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं।

0: बहुत बहुत वेलकम है अनिल कश्यप जी।
1: थैंक यू सर, और नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते नमस्ते, और कैसे हैं?
1: कैसे हैं?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए।
1: मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ।
0: ओके जी, तो बताइए ए अक्षर वाले फिल्मों में से किसी एक गाने को बताइए, आप गुनगुनाइए।
1: मैंने प्यार किया य अक्षर आ रहा, तो य अक्षर से
0: मैंने प्यार किया, ये
1: गाना का
0: मैंने प्यार किया, अगर इंग्लिश में देखूं तो ए आएगा, वाई ए है ना, यानी कि है ना वाई ए आएगा, तो मैंने इसीलिए इंग्लिश अक्षर लिया है कि ए अक्षर से आप मुझे भेज सकते हैं। ओके
1: जी, तो गाना बता दूं या
0: और
1: हाँ, का नाम अगर, बता दूं जिसे?
0: और अगर हिंदी में बताना चाहते हैं तो वो आएगा अक्षर आएगा या आएगा, तो उसका भी बता सकते हैं। नो प्रॉब्लम।
1: हाँ, ये दिल आशिकाना का टाइटल है।
0: ओके, ये दिल आशिकाना का टाइटल है, तो गुनगुना दीजिए थोड़ा।
1: गुनगुना दे, हाँ, ये दिल आशिकाना, मतलब सर अभी प्रिपेयर नहीं उसके लिए।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, फिलहाल गाने को जरूर मैं प्ले करूंगा। ओके
1: ओके सर, धन्यवाद, थैंक यू।

0: बहुत बहुत वेलकम है रूपचंद जी, बताइए।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम जी।
1: ये अक्षर से याराना मूवी।
0: ओके बताइए गाना कौन सा।
1: तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा फसाना।
0: धन्यवाद। ओके एंजॉय कीजिए इस गाने को फिलहाल।

0: एक और कॉल जी। बहुत बहुत वेलकम है जी, संतोष वर्मा जी।
1: हेलो
0: जी।
1: हाँ जी
0: बोलिए जी।
1: हाँ, अनाड़ी फिल्म का गाना है दो साथ चेहरा तेरा। हाँ
0: तो गुनगुनाना पड़ता है ना। बिल्कुल।
1: फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों की मुस्कान है, रूप तेरा देख के, रंग तेरा देख के, कुदरत भी है।
0: धन्यवाद। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: आपकी यही अदा बहुत पसंद है मुझे।
1: धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए, चूंकि आप लोग का फीडबैक मेरे लिए हमें और सशक्त बनाता है, मतलब और भी अच्छा सोचने पर मजबूर करता है कि आप लोगों के लिए कैसे अच्छे से अच्छे मैं प्रोग्राम लेके आऊंगी ताकि आप लोग उसमें इंजॉय करें, मतलब मजा आए। तो ये अंताक्षरी का एक यानी के न्यू वर्जन है, एक नया रूप है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा।
0: बहुत मेहनत करते हो सर जी, आप अपनी जान से ज्यादा मेहनत करते हो रेडियो आर्टिस्ट स्टार के लिए। मालिक आपको बुलंदी पे पहुंचाए, आपको नंबर वन रखे हमेशा।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। और ये यलगार फिल्म का मैंने ये गाना सोचा था, तुम्हें आना है थोड़ा गुनगुना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, नेकी और पूछ।
0: आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी।
1: क्या बात है,
0: आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए
0: जी। थैंक यू।

और इस बार मेरे पास जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है वो पहुंचा हुआ है आरजे वंशिका जी का, रुबीना नाथ जी का, अजय खुश जी का, विलास निकम सर जी का और संदीप सुतार जी का, सुनीता गोप जी का, कुंता बेनी जी का, अशिल्पा इन बेन जी का और बाबूलाल अंजाना जी का, आवाज की मलकार जी रत्ना जी का, संगीता मुरकर जी का, निशांत रायबोले जी का, विष्णु चंद्र जी का, रवि मोहरे जी का और हमारे उदय प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर उत्तर से, इनका भी है और राहुल पासी जी का है। फिलहाल आरजे वंशिका जी एंजॉय कीजिए।

और इसमें भी सेम कंडीशन है। फिल्म का नाम है और प्यार हो गया। इंग्लिश में कहेंगे तो ए और हिंदी में कहेंगे तो या, तो दोनों में ए या य से मुझे मतलब इन फिल्मों वाले किसी भी गाने को जल्द से जल्द लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 9135841232 पे। अगर कॉल करना है तो नॉर्मल कॉल करना पड़ेगा इसी नंबर पे।

0: जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं एक बार फिर से अनिल कश्यप जी।
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्ते जी। अगेन जी जी एक बार फिर से आपका वेलकम है
1: जी। आन मूवी है ये अक्षर आ रहा है तो आन मूवी है।
0: ओके
1: और आन मूवी से कोई भी गाना चला दीजिएगा
0: तो आपको बताना पड़ेगा।
1: अच्छा गाना मैं ही बताऊं?
0: हाँ आप ही को बताना पड़ेगा।
1: तो गाने का नाम है अरे दिमाग में ही था गाना।
0: कोई बात नहीं
1: फिल्म का नाम याद है।
0: आप दोबारा कॉल कीजिएगा प्लीज।

0: जी एक बार बहुत बहुत फिर से वेलकम है अमित तपड़िया जी।
1: जी सर, ए से गाना है ना?
0: ए अक्षर के इन फिल्मों वाले गाने।
1: सर आवाज बहुत मतलब बहुत कट रही है।
0: मैं कह रहा हूँ कि फिल्म के ए अक्षर से फिल्म वाले नाम के गाने सुनवाने हैं आपको, किसी भी कोई भी गाना।
1: आज आई बाहर वो ए से गाना।
0: नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। यानी फिल्मों के नाम निकालिए, ए अक्षर वाले फिल्म चाहे य अक्षर वाले फिल्म, और उसके गाने को गाना है, कोई भी गाना उसमें का। ओके,
1: ठीक
0: है।

0: कौन कौन? विशाल अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका।
1: नमस्कार सर, नमस्कार आपके चैनल सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। एक तो लड़का हुआ तो हमको,
0: अच्छा आपको लड़का हुआ तो हमको बधाई हो, धन्यवाद।
1: हाँ जी सर, बहुत बहुत सर जी, आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा सर। अच्छा। मेरी एक टेंशन नहीं खत्म हो रही सर।
0: अच्छा, हमसे मिल लीजिएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल मिल
1: सर, कहाँ मिलो फिर आप
0: जी? आपको आना होगा बिहार में, सिवान जिला में।
1: अच्छा बिहार में आना पड़ेगा, ये यहाँ पे तो सर बहुत कहीं दिल है, आप नहीं आ सकते हरियाणा में?
0: नहीं नहीं सर जी, अभी मैं नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं आऊंगा तो फिर प्रोग्राम कैसे करूंगा, है कि नहीं?
1: अच्छा अच्छा, ये सोहन लाल जी है ना, जो इससे पार्टी लेनी है।
0: अच्छा ठीक है, ले लीजिए पार्टी, फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।
1: हाँ गाने भी कह रहे हैं सर, एक हेल्प कर देते।
0: ओके ओके,
1: एक हेल्प कर देते सर, एक हेल्प किए थे आपसे।
0: अच्छा ठीक है, करेंगे बाद में, पहले फिलहाल ये काम कीजिए, गाना सुनिए।

0: एक और कॉल जी। बहुत बहुत वेलकम करते हैं रूपचंद जी, आप भी बता दीजिए।
1: हेलो सर, आवाज नहीं आ रही।
0: आवाज नहीं आ रही है मेरी तो? आपकी आवाज तो आ रही है। ओह माय गॉड, अच्छा कॉल आ गया जी। राहुल जी
2: हेलो।
0: हाँ एक बार फिर से वेलकम है आपका।
2: थैंक यू जी। ए से, ए अक्षर से,
0: मतलब ए अक्षर के फिल्मों के नाम से।
2: ए से आज का अर्जुन।
0: आज का अर्जुन का कोई भी गाना बताइए।
2: गोरी है कलाइया वाला सुना देना। ये
0: गाना पड़ेगा आपको।
2: गोरी है कलाइया की लगी तुझे हरी हरी चूड़िया, अपना बना ले मुझे बाल मां।
0: ओके थैंक यू, धन्यवाद।

0: से
1: एक और कॉल जी, बहुत बहुत वेलकम है।
2: हाँ, ए अल्फाबेट से आईना मूवी का गुड़िया रे मेरी नींद चुरा के ले जा, दिन तक नक दिन दिन दिन था तेरे आने से, तेरे आने की आहट से चूड़ी मेरी।

0: बहुत अच्छा, धन्यवाद। ओके जी, तो फिलहाल गाने को एंजॉय कीजिए।
1: आंखों में
0: एक और कॉल
1: तस्वीर
0: जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं रूपचंद जी फिर से।

0: जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं रूपचंद जी।
1: हेलो हेलो
0: जी, बोलिए, आवाज आ रही है?
1: हाँ कम आ रही है।
0: कोई बात नहीं, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है।
1: हाँ सर, ये दिल लगी मूवी।
0: हाँ हाँ बताइए, गाना कौन सा?
1: और गीत है, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले, गाओ यारो तराना झूम झूम के ओले ओले जी।
0: ओके धन्यवाद, एंजॉय कीजिए गाने को फिलहाल।
2: मेरी तकदीर है जैसे इस दिल से।
0: एक और कॉल जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाई, यानी कि चंद्रभूषण सिंह जी।
3: नमस्ते, मैं चंद्रभूषण सिंह बोल रहा हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश जिला प्रयागराज से।
0: जी जी बोलिए बोलिए
3: सर। अगर अक्षर ए से है तो सर मैं ए से गाना ढूंढ के लाया हूँ, बहुत मुश्किल से।
0: मतलब ए अक्षर से गाना नहीं है, मतलब ए अक्षर से फिल्मों के नाम वाले गाने सुनाने हैं आपको।
3: अरे हाँ सर, वो एबीसीडी फिल्म का गाना है ना, वो एबीसीडी पढ़ ली, बहुत अच्छी बातें कर ली, बहुत ही वाला सुनना था।
0: हाँ तो आप बता दीजिए।
3: जी सर, एबीसीडी पढ़ी ली, बहुत अच्छी बातें कर ली, बहुत अब करूंगा तेरे साथ।
0: लेकिन भाई गंदी बात नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? फिलहाल गाना एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

0: एक और कॉल जी। अमित तपड़े जी आपका भी वेलकम करते हैं।
1: सर
0: बताइए।
1: फिल्म का नाम आन मित्र सजना और गाने के बोला अच्छा
0: जी। धन्यवाद देते हैं। ओके फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: जी प्रियंका जी, अभी मैंने अक्षर नहीं दिया है, अक्षर दूंगा तो कॉल कीजिएगा।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, अक्षर वक्षर नहीं, वो जो अभी गाना सुनाया था ना आपने,
0: हाँ हाँ,
1: मेरी सांसों में
0: अच्छा,
1: क्या
0: अच्छा, अच्छा,
1: बसा
0: हाँ,
1: है
0: हाँ, हाँ,
1: वो बस दो लाइन सुनानी थी इसलिए कॉल
0: अच्छा,
1: किया।
0: ओके ओके, सुना दीजिए।
1: मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तू मेरे दिन में रातों में
0: अच्छा,
1: ख्वाबों में ख्वाबों में। आप बता दो ना थोड़ा सा क्या है।
0: कोई बात नहीं, फिलहाल गाने
1: नहीं, नहीं, गाओ ना थोड़ा सा थोड़ा सा, आपको आता है सर।
0: तू मेरे दिन और रातों में ख्वाबों में, और मुझे भी भुलवा दिया आपने।
1: खामोशी में बातों में बादल के चादर।
0: कोई बात नहीं, गाने एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।

0: बिल्कुल, और मेरे पास जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा अजय कुजी का पहुंचा है, फिल्म आप आई बाहर आई का गाना सुनना चाहेंगे ये, और इनके बाद यानी कि विष्णु चंद्र जी हैं और विलास निकम सर जी हैं और यानी कि कुंता बेनी जी भी हैं और सुनीता गोप जी हैं और ये निकलस जी हैं और निशांत राय बोले जी हैं। फिलहाल ये गाना इंजॉय कीजिए।
1: कैसा कैसा
2: तेरी याद सताती है, नींद नहीं आती है रात।
0: और इस बार आप आए बाहर एक हिंदी में भी ई है और इंग्लिश में भी ई है, तो ई से ई अक्षर वाले इन फिल्मों के मतलब में से आप गाने भेज सकते हैं कोई भी या कौन भी।

0: फिलहाल कॉल उठाता है। हेलो, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका एक बार फिर से दीपक कुमार गायकवाड़ जी।
1: हेलो जी सर, पर बाकी सुनने वालों को बहुत बुरा लग रहा होगा।
0: नहीं
1: बार बार
0: कोई बात नहीं, देखिए ये अंताक्षरी है, आप जितना बार कोशिश कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है।
1: जी हाँ, फिल्म का नाम है इश्क और उसका टाइटल सॉन्ग ये सुना दीजिएगा।
0: ओके धन्यवाद।
1: इश्क हुआ कैसे हुआ, अच्छा हुआ
0: जैसे हुआ,
1: जैसे हुआ
0: बिल्कुल
1: ठीक है, शुक्रिया,
0: सुनाएंगे जरूर।

0: दिल का शब्द जी जी बोलिए, बहुत बहुत वेलकम करते हैं एक बार फिर से
1: जी। नमस्ते वंस अगेन सर।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: एक रिश्ता मूवी सर।
0: बिल्कुल बता दीजिए।
1: और इससे गाना रहेगा कि तुझे प्यार से देखने वाला,
0: अच्छा,
1: तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है। और दिल तो सही में है, रेडियो स्टार हो गया है पूरा दिल में।
0: और सच में बात मैं आपको बताऊं कि इसी फिल्म का गाना सबसे पहले मैसेज में भी आया हुआ है और यही गाना आया हुआ है, तो फिलहाल अच्छा। ये इत्तेफाक की बात है। फिलहाल अच्छा इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: जी बहुत बहुत वेलकम है, अस्सलाम वालेकुम आजाद अंसारी जी।
1: जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात, और कैसे हैं, क्या चाल?
0: अरे हम तो बहुत ही अच्छे हैं, और आप तो ईद के चांद हो गए हैं।
1: सही बात है, घर पे आकर और व्यस्त हो गए हैं।
0: बिल्कुल, इतना व्यस्त हो गए कि भाई समय ही नहीं मिल रहा है बात करने का कभी आपसे।
1: सही बात है, और सुनाए कैसे हैं, क्या हाल
0: जी? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, आपकी दुआएं हैं। अंताक्षरी का
1: ठीक है, मौका
0: मैं शो कर रहा
1: हूं, मौका मिलेगा तो कभी आता हूं आपके पास।
0: जी जी बिल्कुल आइए, वेलकम है आपका।
1: ठीक है,
0: तो
1: मेरा गाना रहेगा फिल्म इंसानियत का। गाना भूल गए बोलते बोलते,
0: बताइए।
1: अरे जो गाते हैं ना वो
0: कौन,
1: दिल में
0: साथी तेरा प्यार, पूजा है ना?
1: साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है।
0: कोई बात नहीं, फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए, है ना? धन्यवाद। एक और कॉल जी, बहुत बहुत वेलकम है, क्या है प्रियंका जी?
2: अमन जी आपको फोन लगाना तो इस तरीके से हो गया है जैसे मंदिर में बैठे भगवान के दर्शन करना।
0: ओह माय गॉड, ऐसा ना कीजिए प्लीज।
2: और क्या, इतना इंतजार?
0: ओह माय गॉड, बताइए बताइए अब कौन सा गाना लेके आई हैं आप?
2: ई से इतिहास मूवी का गाना है ना।

0: कैसा
1: जी, एक बार फिर से वेलकम।
2: अच्छा, नमस्कार
1: नमस्कार रंजन कुमार जी।
2: इस बंजारा था जो जीवन का गीत सुनाता।
1: अच्छा जी,
2: वही टाइटल सॉन्ग।
1: धन्यवाद जी, फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।
2: ओके।

और ये अंताक्षरी है, इसमें जितना बार हो सके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ताकि हमारे दोस्त देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा विनर बनता है। फिलहाल ये गाना हमारे दीपक कुमार गायकवाड़ जी का था, इश्क हुआ कैसे हुआ।

बिल्कुल, लेकिन मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुंचा हुआ है आरजे वंशिका जी का, रूपचंद जी का, जाकिर खान जी का, सुनीता गोप जी का, विष्णु चंद जी का, संगीता अम्बुलकर जी का, और हमारे यानी कि कुंता बेनी जी का, निशांत राय बोले जी का, राहुल पासी जी का, एक साहब और भी जुड़े हैं, नाम तो मुझे नहीं पता है, अंत में नंबर है ये 369963। ओके, एक साहब और भी है, क्या नाम है इनका भाई, इनका भी नाम मुझे नहीं पता है, ये है सुजात जी, तो आपका भी वेलकम है सुजात जी। और ओके, कोई बात नहीं, फिलहाल तो इंजॉय कीजिए। और ये है एक रिश्ता, हिंदी में कहेंगे तो ये ता होगा और इंग्लिश में कहेंगे तो ए होगा, तो ए या ता से मुझे वो इन फिल्मों वाले गाने का नाम से कोई भी गाना भेजिए ताकि हम प्ले करेंगे, उसको कॉल भी कर सकते हैं आप।

0: बहुत बहुत आपका वेलकम है रूपचंद गोयल जी।
1: थैंक यू सर जी।
0: बोलिए।
1: तो मूवी से तहलका।
0: तो कौन सा गाना?
1: दिल दीवाने का डोला दिलदार।
0: ये तो फिल्म का नाम में तहलका है।
1: हाँ तहलका तह हुआ ना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल हुआ
1: जी।
0: ठीक है धन्यवाद।
1: तहलका मूवी का गीत है ना।
0: ओके ओके, ओके।

0: एक दिल है। एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है आजाद जी।
1: जी
0: और जिनका सबसे पहला कॉल आएगा उन्हीं का गाना भी प्ले होता है जी। वैसे आप कॉल लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
1: तो मेरा पहला नंबर है
0: जी,
1: अभी मेरा पहला नंबर है, दूसरा नंबर
0: है, यानी कि सेकंड कॉल है। हाँ
1: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं।
0: तो कोई बात नहीं,
1: आप अनाड़ी फिल्म का गाना रहेगा
0: जी। जी
1: फिल्म अनाड़ी
0: जी,
1: और गाने का बोल क्या मौसम आया है
0: जी। गाना तो बहुत अच्छा, यानी काश तो पहले कॉल किए होते, मजा आता।
1: चलिए कोई बात
0: कोई बात नहीं, धन्यवाद।

0: एक दिल एक और कॉल है जी। बहुत बहुत वेलकम है शक्तिलाल कुशवाहा जी।
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं?
1: अच्छे हैं।
0: ओके, बताइए आप कौन सा गाना लेके आए हैं और किस फिल्म का गाना लेके आए हैं?
1: सौदागर।
0: नहीं, ये तो मतलब ये है ही नहीं, यानी कि टी से चाहे ए से गाना था। बिल्कुल नहीं, यानी कि टी से एक रिश्ता, यानी तो चाहे ए, हिंदी का तो और इंग्लिश का ए। कोई बात नहीं, फिलहाल फिर से सोचिएगा। धन्यवाद। एक और कॉल जी। बहुत बहुत वेलकम करते हैं रवि मोहड़े जी।

0: प्रियंका जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका, कहिए। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो कॉल। जी बहुत बहुत वेलकम है आपका।
1: आवाज आ रही है?
0: हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, अच्छी आ रही है।
1: तुम विन मूवी।
0: हाँ हाँ बताइए।

तुम सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन।

0: फिर मुझको तड़पा रहे
1: अच्छा जी,
0: हो, फिर मुझको तड़पा रहे हो, इस दिल में यादों के
1: क्या
0: मेले
1: बात है।
0: हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। अमन जी आज मतलब पूरा गाना सुनाने को मिल रहा है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है।

0: जी जी बहुत बहुत वेलकम है आपका।
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: हेलो
1: हेलो मंसर जी, आवाज आ रही है आपको?
0: जी आवाज तो आ रही है। हेलो, ओ माय गॉड, उधर से यानी म्यूट हो गया था, पता नहीं कहाँ से म्यूट था, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग की मेरी आवाज आ रही होगी बिल्कुल, लेकिन मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी हैं, मैं शामिल करूंगा। एक और कॉल आ रहा है जी। हेलो, बहुत बहुत वेलकम करते हैं जी। हेलो,
1: थैंक यू जी। ए से आशिकी फिल्म।
0: ओके, गाना कौन सा?
1: अब तेरे बिन जी लेंगे हम।
0: तो गाइए ना।
1: अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया।
0: फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए, दिल दीवाने का डोला।

0: एक और कॉल है, रिसीव करते हैं। जी बोलिए, आपका शुभ नाम?
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
1: नीतीश प्रजापति सर।
0: नीतीश कुमार जी, जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। कैसे हैं?
1: मस्त है सर।
0: ओके,
1: और ये मूवी का नाम टी से है ना?
0: हाँ हाँ,
1: तो ताल मूवी का नाम टाइटल है और इसी का सॉन्ग है ताल से ताल मिला।
0: तो गाना ही है, आपको गाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। ओके,
1: बस इतना ही हो सकता।
0: कोई बात नहीं, फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।

0: लिए।
1: एक और कॉल जी। बहुत बहुत वेलकम करते हैं भाई विष्णु जी। हेलो हेलो, इनकी आवाज नहीं आ रही।

0: जी अंजनी कुमार जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका, कहिए।
1: हाँ वेलकम वेलकम सर, खाने क्रांति फिल्म का तुम तरम तरम।
0: ओके, यानी के चना चोर गरम।
1: जी जी
0: ओके जी, धन्यवाद जी, इंजॉय कीजिए फिलहाल इस गाने को जी। ओके जी
1: जी जी सर।
0: और एक और का जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं।

दोस्तों ये चल रहा है अंताक्षरी का सेकंड राउंड। तो सेकंड राउंड में मेरे पास जो सबसे पहला मैसेज पहुंचा हुआ है इस मैसेज में संगीता अम्बुलकर जी का है और ज्योति खटवाड़े जी का है, रूपचंद जी का है, विशाल ये नाम है इनका, विष्णु चंद्र जी है, जाकिर खान जी है और जी शक्तिलाल कुशवाहा जी है, सीता गोप जी है, कुंता बेनी जी है, रवि मोहरे जी है, अजय कुश जी है और यहाँ पे निकला जी डेनमार्क से भी सुन रहे हैं और ये भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छा भेज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो जा रहा है इनका, कोई बात नहीं है लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। और निशांत राय बोले जी हैं, तो फिलहाल अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे फिल्म यानी कि तुम बिन, और इसका अंतिम अक्षर है एन, हिंदी में भी न, इंग्लिश में भी न, यानी कि न अक्षर वाले, एन अक्षर वाले आप फिल्मों के नाम से कोई भी गाना भेज सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।

0: कॉल आ गया जी। बहुत बहुत वेलकम है दीपक कुमार गायकवाड़ जी एक बार फिर से।
1: जी जी सर, फिल्म का नाम है नमक हलाल। पग घुंगरू बांध मीरा नाची थी।
0: क्या बात है भाई, आप लोग तो चुन चुन के ला रहे हैं गाने एक से बढ़ के एक, है ना?
1: जी सर।
0: इंजॉय कीजिए फिलहाल इस गाने को।
1: शुक्रिया सर।
0: वेलकम। अगला कॉल हमारे अकबर खान जी का। बहुत बहुत वेलकम करते हैं अकबर खान जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही अकबर खान जी।

0: बहुत बहुत वेलकम है अनिल कश्यप जी एक बार फिर से।
1: थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। अच्छा नो एंट्री। ओके क्या बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं अकबर खान जी एक बार फिर से।
1: हाँ जी,
0: हाँ फिलहाल उस समय आपकी आवाज नहीं आ रही थी।
1: हेलो
0: जी, जी बोलिए।
1: हाँ फिल्म नगीने का गाना है जी।
0: बता दीजिए।
1: आज कल याद कुछ और रहता नहीं।
0: क्या बात है।
1: एक

0: चले आइए और फिर जाइए जान जाने के बाद।
1: और मैं बता दूं, इत्तेफाक से इसी गाने की मतलब यानी मैसेज में सबसे पहला आया हुआ है, इसलिए
0: बहुत बहुत
1: ये गाना
0: धन्यवाद।
1: तो प्ले होगा ही होगा, है कि नहीं? ओके, एंजॉय कीजिए। एक और कॉल। जी भाई, बहुत बहुत वेलकम है नजीर भाई। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, नजीर अंसारी जी,
2: जी सर।
1: बहुत बहुत वेलकम है आपका अंताक्षरी में।
2: जी जी ये नाम से है ना
1: हाँ,
2: नायक मूवी।
1: ओके, गाना
2: चलो चले मितवा, इन ऊंची नीची राहों में।
1: चले चलो मितवा, जी बिल्कुल सही कहा आपने।
2: जी।
1: ओके जी, फिलहाल लेकिन थोड़ा सा कॉल पहले करते तो जरूर गाना मैं प्ले करता। गाना बहुत अच्छा था आपका, है ना?
2: 20 बार लगाया फोन, सर लग ही नहीं रहा था।
1: ओह माय गॉड, चलिए फिलहाल लग गई। ओके, धन्यवाद।
2: ठीक है, ठीक।
1: एक और कॉल। बहुत बहुत वेलकम है आपका जी। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। जी बहुत बहुत वेलकम है एक बार फिर से प्रियंका जी।
3: नाकाबंदी मूवी का सॉन्ग है अमन जी।
1: हाँ हाँ बोलिए।
3: रेखा को देखा तूने, हेमा को देखा,
1: अच्छा
3: नरगिस को देखा तूने, नूतन को देखा,
1: अच्छा
3: जरा इधर पलट कर दे,
1: ओहो
3: मैं लगती हूँ श्रीदेवी, लगती हूँ,
1: अच्छा आप श्रीदेवी हो,
3: मैं लगती हूँ श्रीदेवी, लगती हूँ।
1: वाह वाह,
3: हाँ मैं तो अपने ऑफिस की श्रीदेवी हूँ, क्योंकि मुझे श्रीदेवी
1: ऐसी
3: पसंद है, मेरा लुक भी ऐसी की जैसा है।
1: धन्यवाद, फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: एक और कॉल जी। बहुत बहुत वेलकम है रुबीना नाथ जी।
1: जी सर अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: कैसे हैं आप?
0: बहुत ही अच्छे हैं।
1: हम भी अच्छे हैं। वैसे काफी लेट हो गया मुझे जुड़ने में।
0: जी बिल्कुल, आज तो प्रोग्राम धमाल चल रहा है।
1: प्रोग्राम तो मैं सुन ही रही हूँ। हाँ अच्छा। एकदम धमाल चल रहा है सुन रही हूँ, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला है कि मैं आपके पास मैसेज करूँ या कॉल करूँ।
0: जी जी बिल्कुल, फिलहाल कॉल
1: प्रोग्राम सुन रही हूँ।
0: फिलहाल आपका कॉल आ गया, थोड़ा सा लेट हो गई है। अगर पहले कॉल करती तो पहला गाना तो प्ले हो ही जाता, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत देर
1: हाँ, मैं सुन रही हूँ लेकिन क्या करूँ, मतलब कुछ कामों में मैं बिजी थी इसलिए नहीं कॉल कर पा रही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। तो बताइए आप किस फिल्म का कौन सा गाना? हाँ
1: फिल्म का नाम है निकाह और गाने का बोल है

0: बहुत प्यारा गाया आपने।
1: शुक्रिया।
0: फिलहाल आप इस गाने को एंजॉय कीजिए कि पग घुंघरू बांध मेरा नाच।
2: लोकल लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज।
0: अच्छा।
2: भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।
0: ओके।

0: जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी विष्णु जी।
1: जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
1: नील कमल फिल्म का गाना है आजा तुझको पुकारे मेरा हाँ, प्यार।
0: जी बहुत देर कर दिया आपने कॉल करने में, थोड़ा पहले किए होते।
1: कोई नहीं कोई,
0: फिलहाल एंजॉय कीजिए इस गाने को। धन्यवाद।
2: अरे तो लो भैया हम

0: जी बहुत बहुत वेलकम है रूपचंद जी आपका भी।
1: थैंक यू सर जी।
0: बताइए
1: सर, नया दौर मूवी।
0: हाँ हाँ, गाना
1: उड़े जब जब जुल्फे तेरी,
0: वाह वाह,
1: सवारियों का दिल मचले,
0: सच में मचले,
1: ओ जब ऐसे चिकने चेहरे, तो क्यों ना नजर फिसले।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी जी,
0: धन्यवाद देते हैं इसका, एंजॉय कीजिए इस गाने को।

और एक और कॉल जी। बोलिए हमारे भाई शक्तिलाल कुशवाहा जी, कहिए। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, कॉल कट कर।

0: जी हाँ जी बोलिए, एक बार फिर से कॉल आ गया है आपका।
1: नमस्कार
0: नमस्कार, आवाज आ रही है
1: जी सर।
0: आप कहिए कौन सा गाना है और किस फिल्म का है? नहीं मतलब नहीं भाई, आप यानी कि एन से करना है, एन एन एन से नमक हलाल जैसे अभी गाना प्ले हो रहा है ना, उसी तरह एन फिल्म से मतलब एन अक्षर वाले फिल्म के गाने भेजने थे, मतलब गाने थे चाहे बताने थे, ठीक है? ओके, तो पहले समझ लीजिए उसके बाद कॉल कर दीजिए प्लीज। अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो मैं बता दूँ कि सबसे पहले किनका आया हुआ है। सबसे पहले आया हुआ है गजानंद सलोकार जी का, और इनके पास जाकिर खान जी है, और यानी कुंता बेनी जी है, अजय कुछ जी है, आर जे वंशिका जी है, और हरि संतोष जी है, और सुनीता गोप जी है, ज्योति खटवाड़े जी हैं, और विष्णु चंद्र जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, राहुल पासी जी हैं। तो आजकल याद कुछ रहता नहीं, बिल्कुल एक और कॉल आया हुआ है पहले सुनते हैं जी। बहुत बहुत वेलकम है अंजनी कुमार जी।
2: ये सर नदिया का पार फिल्म गाना सुनाइए सर
0: जी।
2: नदिया का पार का
0: ओहो
2: जी जी,
0: तो वो तो गाने की डिमांड है
2: सर, कम से कम दो जी सर, दो तीन फरमाइश की, लेकिन आप एक भी नहीं सुनाए।
0: बात ये है,
2: कम से कम भोजपुर,
0: मेरी बात सुनिए। जिनका सबसे पहला कॉल इन लग रहा है उनके गाने प्ले हो रहे हैं, जिनका पहला मैसेज आ रहा है उनके गाने प्ले हो रहे हैं, ठीक है? आप कोशिश कीजिए सबसे पहले कॉल करने की या सबसे पहले मैसेज करने की। ओके ओके, धन्यवाद, फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए।
2: ओके सर।

ये फिल्म है नगीना, अंत में आ रहा है ए और हिंदी में होगा न, चाहे एन से या ए से। आप गाने की आप मुझे मतलब यानी उस फिल्म के गाने लिख के भेज सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं, एन या ए।

0: ओके धन्यवाद। ओके जी, तो फिलहाल एक और कॉल जी। बहुत बहुत वेलकम है रुबीना नाथ जी।
1: जी सर, तो अभी आया है मूवी से सॉन्ग सुनाना
0: जी,
1: है ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो फिल्म का नाम है अंजाम और सॉन्ग का बोल है 18 बरस के कवारी गई थी,
0: अच्छा
1: घूंघट में पड़ा छुपा के चली।
0: ओह माय गॉड।
1: 18 बरस के कवारी गई थी, घूंघट में मकड़ा छुपा के चली थी, फंसी गोरी
0: ओहो
1: फंसी गोरी, चने के खेत में हुई चोरी, चने के खेत में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा गाया, धन्यवाद, एंजॉय कीजिए गाने को। और फिलहाल

0: और बहुत बहुत वेलकम करते हैं अस्सलाम वालेकुम एक बार फिर से आमना खान जी।
1: वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम।
0: और
1: मूवी का नेम?
0: हाँ हाँ बोलिए बोलिए।
1: ना से ना नो एंट्री।
0: हाँ हाँ एन ओके ओके हाँ नो एंट्री हो जाएगा नो प्रॉब्लम
1: जी। टाइटल सॉन्ग नो एंट्री।
0: तो गाइए थोड़ा सा गुनगुनाइए थोड़ा सा। कोई बात नहीं आजकल सभी बाथरूम सिंगर होते हैं।
1: जी। कोई जान से गया कोई माल से गया कोई जहान से गया सारी कंट्री मैं वंशिका जी बन जाती सारी कंट्री।
0: अच्छा
1: इश्क दी गली विच नो एंट्री।
0: ओहो धन्यवाद आपने कॉल किया इतना प्यारा गाया सुनवाया बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद।
1: आपका प्रोग्राम भी एक नंबर।
0: थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच।

और संगीता अम्बुलकर जी लग रहा है कि आप थक गई हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है, बहुत से दोस्त थक गए हैं मैसेज करते करते। मैं समझ सकता हूँ आप लोग का हाथ में दर्द हो गया होगा, क्योंकि हर गाने पर कुछ ना कुछ भेजना है। फिलहाल मेरे पास सबसे पहले मैसेज पहुँचा हुआ है। अच्छा एक मिनट, सबसे पहले मेरे पास आया था यानी कॉल, यानी प्रियंका जी का, पहले उनका गाना प्ले करता हूँ, फिर मैं मैसेज की तरफ आता हूँ।

और धीरे धीरे यानी कि समय की समाप्ति होने जा रही है, लेकिन मेरे पास जो मैसेज पहुंचा है सबसे पहले ज्योति खटबड़े जी का है, और इनके पास यानी कि निकलस जी हैं, डेनमार्क वाले हैं, और जाकिर खान जी हैं, अजय कुट जी हैं, कुंता बेनी जी हैं, गजन सुलकार जी हैं, निशांत रायबोले जी हैं, और शक्तिलाल जी हैं, राहुल इपासी जी हैं। फिलहाल तो गाना प्ले करता हूँ ज्योति खटबड़े जी का, एंजॉय कीजिए। और ये है आ अब लौट इन चले, हिंदी में ला और इंग्लिश में एन। ओके, तो इंग्लिश में एन और हिंदी में हो रहा है यानी ला, तो आप मुझे यानी कि एन या एल से यानी ला से आप मुझे गाने भेज सकते हैं, मतलब गाने नहीं भेजना, उस फिल्म के गाने भेज सकते हैं। ओके, और उसके बाद से कॉल भी कर सकते हैं।

अब से चूंकि यानी कि प्रोग्राम करने के बाद से थोड़ा सा कुछ कभी कभी अंदाजा नहीं होता है, अनुमान नहीं होता है, तो मैं अब जो भी कॉल उठाऊंगा एक अंतरा के बाद ही कॉल उठाने वाला हूँ।

0: बिल्कुल अब फोन आएगा तो उठा लेंगे जी। बहुत बहुत वेलकम करते हैं, और अब मैं अब से एक अंतरा के बाद ही मैं कॉल उठाने वाला हूँ। ओके, तो बहुत बहुत वेलकम करते हैं रूपचंद जी, बताइए।
1: हेलो।
0: हाँ जी, हेलो जी, बहुत बहुत वेलकम है भाई नीतीश कुमार जी।
2: जी जी नमस्कार भैया।
0: नमस्कार नमस्कार।
2: मोहब्बत मूवी का नाम है मोहब्बतें, और सॉन्ग है
0: भैया
2: चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ
0: मैं, मेरी बात बैठे बैठे
2: जी भैया।
0: एक्चुअली या तो एन लेना है या हिंदी का यानी के लॉ लेना है, उनमें से कोई इन फिल्मों के नाम के गाने। जी जी
2: मैंने तो कंफ्यूज हो गया है मॉडर्न में।
0: नहीं नहीं, धन्यवाद।

0: ओह माय गॉड, बहुत बहुत वेलकम है आरजे आकांक्षा जी। राधे राधे।
1: राधे राधे।
0: और कैसी हैं आप?
1: बड़ी मुश्किल से तो कॉल लगा है, इतनी देर से हम लगा रहे, पानी बताशे खा लिए, हमने शॉपिंग कर डाला, अपने बाबू का अपने कपड़ा बदल डाला, बॉटल में दूध भर लिया, घर वालों को शॉपिंग किया, सामान दिखा दिया, इतना सारा काम हो गया, उसके बाद अब जाके फाइनली कॉल लगा।
0: चलिए आप आए, बाहर आई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
1: और अभी क्या चल रहा है मुझे ये भी नहीं पता।
0: अंताक्षरी चल रहा है, अंताक्षरी चल रहा है, और अक्षर है या तो एन यानी कि न, या आपको हिंदी का अक्षर है इन ल, इनमें से यानी कि मतलब एन या एल से
1: गाना बताना है।
0: गाना नहीं, उस फिल्म का कोई गाना बताना है, मतलब एन अक्षर से शुरू होने वाले फिल्म या एल अक्षर।
1: आवाज क्लियर नहीं आ रही हमको, आवाज भर भरा के आ रही है।
0: मैं कह रहा हूँ कि एल अक्षर या एन अक्षर से स्टार्ट होने वाले फिल्मों के नाम से कोई भी गाना बताना है जी।
1: लाल बादशाह।
0: ओके, गाना बता दीजिए
1: उसका कोई भी। हाँ, सॉन्ग आप प्ले कर दीजिए।
0: आप बताना अच्छा। पड़ेगा आपको गाना गुनगुनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा
1: गाना बताना पड़ेगा। तो अभी तो मेरे को याद नहीं है, बस यही याद कि लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन चूहा भगा रहे थे, पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिए थे।
0: हाँ,
1: सीन ही याद आ रहा है।
0: अच्छा, तो ऐसे तो नहीं होगा।
1: हाँ,
0: फिलहाल आपको फिल्म का नाम के साथ साथ
1: मतलब या फिर निगाहें और नागिन में कोई एक है। हाँ, शायद निगाहें से।
0: ओके,
1: सावन के झूले ने।
0: हाँ, ये तो आप थोड़ा सा गुनगुना दीजिए।

0: बहुत बढ़िया।
1: साथ में हमारे हमारे छोटू महाराज भी हैं।
0: जी जी
1: ये
0: जी, मैं मतलब उनका भी
1: सुन रहे होंगे।
0: जी मैं उनका भी वेलकम करता हूँ।
1: अरे इनका भी वेलकम है।
0: जी उनका भी वेलकम है।
1: हेलो,
0: आप दोनों का वेलकम है।
1: सोच भी नहीं सकते, सबसे छोटकू हमारे यहाँ के लिसनर हैं।
0: अच्छा जी, हम
1: मुश्किल से 8-9 महीने के हैं।
0: जी जी, हम उनका बहुत बहुत वेलकम करते हैं।
1: हम प्ले करके रखते हैं और ये भी सुनते हैं।
0: अच्छी बात है, धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: ओके थैंक यू।
0: एक और कॉल। जी बोलिए रूपचंद जी।
2: थैंक यू सर जी।
0: मत और बताइए,
2: मूवी का नाम है लव स्टोरी।
0: हाँ हाँ
2: जी। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना।
0: बिल्कुल।
2: शाम जवा है तू कहाँ है, मैं आई आई आई आजा
0: आजा।
2: जी सर।
0: ओके, फिलहाल गाना एंजॉय कीजिए। धन्यवाद
2: जी, थैंक यू।
3: सो जाऊं
0: एक और कॉल। जी बहुत बहुत वेलकम करते हैं रुबीना नाज जी।
4: हाँ सर, फिल्म का नाम है नाम घूम जाएगा और गाने का बोल है रातों में जगाया
0: आए है
4: नींदों।

0: उस लड़की पे दिलाया है,
1: जिसने मुझे सताया है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, एंजॉय कीजिए। एक और कॉल, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। एक और कॉल जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं प्रियंका जी।
2: हाँ, वो एल से है ना, अल्फाबेट से।
0: हाँ, बोलिए।
2: लव मूवी है सलमान खान की।
0: हाँ,
2: उसमें सॉन्ग है साथ, नहीं पहले यहाँ से ला ला।

0: कभी करना इंतजार, मैंने
1: किया ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार। वाह क्या गाना है।
0: मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार, दिल के चमन का हंसना तो देखा, जागी नजर का सपना तो देखा, झोंका बस।

और इसके बाद से मतलब आखिरी गाना मैं प्ले करूंगा जो मेरे पास मैसेज आया हुआ है उसके बाद से, और आप सभी दोस्तों का मुझे फीडबैक चाहिए, आपको प्रोग्राम कैसा लगा जल्दी जल्दी अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि मैं प्रोग्राम को यहीं पे समाप्ति करने वाला हूँ। फिलहाल गाने एंजॉय कीजिए।

0: और हमारे ये राहुल जी ने कॉल लगाया है, फिलहाल कॉल से बात करते हैं। जी बोलिए राहुल जी।
1: हेलो।
0: हाँ राहुल जी कहिए।
1: हेल से
0: अब तो प्रोग्राम की समाप्ति होने वाली है, अब कोई गाना है तो गा सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
1: हाँ, लव लेटर का सॉन्ग है तोता तोता संदेशा कहना।
0: अच्छा ओके, धन्यवाद धन्यवाद देते हैं।
1: धन्यवाद। ओके।

0: हेलो।
1: हाँ अमन जी, ये फीडबैक इसी पे देना है कि कैसे देना है
0: जी? आप मुझे ये बोल कर दे सकती हैं, यानी कि आवाज को रिकॉर्डिंग करके भेज सकती हैं या मैसेज करके भेज सकती हैं, अभी बोल भी सकती हैं। अगर फोन कॉल से कर
1: भी बता सकते हैं।
0: ओके, कॉल पर भी बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बता दीजिए।
1: हाँ तो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा।
0: थैंक यू सो
1: मच। और सबसे अच्छा तो ये लगा कि हमको गाना गाने को मिला। वो भी पूरा सॉन्ग गाने को मिला। इससे ज्यादा खुशी और किसी चीज की नहीं है, क्योंकि जो आपके मन का हो वो अच्छा, और जो आपके मन का ना हो ना वो तो और भी ज्यादा अच्छा। इसलिए है ना, इसलिए हमें तो बहुत प्यारा लगा आज का प्रोग्राम। ये वाला प्रोग्राम ने फर्स्ट बार ही ज्वाइन करा है। हाँ तो हमें तो काफी अच्छा लगा,
0: तो
1: बहुत मजा आया।
0: तो मैं आपको बता दूं कि हर ये रविवार के मतलब अंतिम रविवार, अगर यानी पांचवा रविवार होता है।
1: आपकी आवाज ऐसी भर भर क्यों आ रही है?
0: मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम होता है हर महीने के सिर्फ इन पांचवे रविवार को ही होता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, प्रोग्राम तो आपके सभी अच्छे होते हैं, कोई उसमें दोहराई वाली बात नहीं है, बट ये वाला प्रोग्राम शायद फर्स्ट बार ज्वाइन करा तो काफी मजा आया। इसमें बहुत भागम भाग भाग दौड़, मतलब आप कहीं भी हिल नहीं सकते हो, सारे काम छोड़ छाड़ के बस ये मोबाइल से चिपके रहो।
0: ओके, धन्यवाद धन्यवाद।
1: काफी अच्छा प्रोग्राम, थैंक यू।
0: वेलकम जी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं, अमन जी प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा है।

0: यहाँ पे यानी पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम तो अच्छा लगा लेकिन एक के बाद एक कॉल यही थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन लोगों के गाने के बाद अगर वो कॉल करते तो और अच्छा लगता। कोई बात नहीं, प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है। और कुंता जी लिखते हैं कि अमर सर जी प्रोग्राम मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही यानी प्यारा लगा है और मजा आ गया। थैंक यू सो मच। एक और कॉल आ रहा है जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है आरजे वंशिका जी।
1: जी थैंक यू सो मच।
0: वेलकम जी।
1: जी कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: जी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बस पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि गले नहीं, मुझे बस कमर गला रोक लिया मुझे।
0: कोई बात नहीं, आप फीडबैक दे सकती हैं।
1: जी प्रोग्राम बहुत बहुत बहुत प्यारा लगा आज, सभी ने मतलब इतने प्यारे प्यारे गाने भेजे और आपकी जो बातचीत हुई ना सभी से मुझे बहुत बेहतरीन लगी।
0: थैंक यू सो मच।
1: और बस एक थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगी मैं।
0: हाँ,
1: अगर आप भी गुनगुनाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो वाला गाना।
0: कौन सा?

0: अगर आप गुनगुनाएंगे तो बहुत बेहतरीन लगेगा।
1: ओहो, तब तो मुझे मतलब क्या बोलूं, अभी तो मतलब मैंने इस गाने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारे राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं

0: ख्वाब ख्वाब है, इतना ही बहुत है।
1: बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा गाया आपने,
0: थैंक यू सो मच। ओके जी, तो फिर और कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: बहुत प्यार प्रोग्राम किया, मतलब मेरा दिन बन गया बस, बहुत बेस्ट,
0: धन्यवाद। ओके फिलहाल अगला फीडबैक में शामिल करता हूँ, धन्यवाद कॉल करने के लिए, वेलकम जी। जाकिर जी का क्या?
2: सर जी प्रोग्राम एक नंबर, चकास मस्त चकाचक गारंटी के साथ, लेकिन महीने में पहला रविवार और आखिरी रविवार को होना चाहिए।
0: ओह माय गॉड, ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। फिलहाल हमारे और भी दोस्त हैं, लेकिन हाँ एक चीज मैं बता दूं कि जो मैसेज में मेरे पास जो गाना आया हुआ है अजय कुश जी का था। अजय कुश जी, मैं आपके गाने को प्ले करूंगा और आप ये लिखते हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे यानी कि सभी दोस्तों को आपसे बात करने का मौका मिला, उन्होंने आपको कॉल किया, प्रोग्राम अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं। निशांत राय बोले जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लगा है। धनेश जी यानी कि दिल्ली से लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा और बाय बाय अमन सर, बाय बाय जी। अरुण जी लिखते हैं कि अमन सर जी आज का प्रोग्राम मुझे मस्त झकास लगा है और बहुत मजा आया, धन्यवाद देते हैं। दीपक जी लिखते हैं कि अमन जी कार्यक्रम तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, सिर्फ यानी कि कौन देखिए दोनों मिक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि जिनको बहुत से दोस्त हैं कि वो यानी बात नहीं करना चाहते हैं, उनको यानी कॉल पर नहीं बात करनी होती है, इसलिए उनके लिए वो मैसेज करें, नो प्रॉब्लम। जिनको बात करनी है वो मुझसे बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दोनों के लिए दोनों चीज़ें हैं, इसलिए मतलब दोनों ऑप्शन मैंने जानबूझ कर दिया है कि जिनको बातें करनी है वो बात कर सकते हैं, जिनको मैसेज करना है मैसेज करें, नो प्रॉब्लम। मैं दोनों के गाने को प्ले कर रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है। ओके रूपचंद जी लिखते, अच्छा इनका तो मैसेज था, ओके ओके ओके ओके, इनका भी मैसेज था। और ज्योति जी क्या कहती हैं, अच्छा यहाँ पे लिखती हैं कि आज का प्रोग्राम अमन जी सुपर से भी ऊपर था, थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्रोग्राम के लिए, आज तो मेरे चार सॉन्ग प्ले हो गए, अच्छा ओके धन्यवाद देते हैं। और मोहम्मद इन कौशन याजी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, ओके ओके कोई बात नहीं जी। और रूपचंद जी लिखते हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, ठीक है थैंक यू सो मच। और अब आखिरी जो गाना है आज का, जैसे कि हमारे किन का, अजय कुश जी का, मैं इसे यानी कि प्ले करूंगा और इसके बाद से एक गाना मतलब मैं भी प्ले करके जाऊंगा, फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए।

0: और यहाँ पे शिल्पा भेजी नृत्य के प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा है, लेकिन मैंने मैंने भाग नहीं लिया, मैंने प्रोग्राम पूरा सुना है। अच्छा, और एक फीडबैक ये भी सुन लेते हैं।
1: हेलो अमन जी, लास्ट मुझे ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगा जो मैं गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: अच्छा।
1: तुमने रतोली तस्वीर हमारी।
0: अच्छा,
1: तुमने रतोली तस्वीर हमारी, पर जिस तरह मौसम बदलते हैं वैसे ही तुमको देखो रंग बदलते हो।
0: अच्छा।
1: बहुत ही प्यारा गाना लगा, इसलिए मुझसे रहा नहीं।

0: एक और फीडबैक है, आरजे बंसिका जी का सुनते हैं।
1: और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यही कहना चाहूंगी सलीम ताजा जी, आपके इतने प्यारे।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, और इस बात पर आप सबके लिए एक गाना छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि भाई इश्क दी गली बीच नो एंट्री नो एंट्री नो एंट्री। इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6 बजे ओल्ड इज गोल्ड में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

और बोलो साथ में अपनी भी नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.